मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 के दो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि तदनुसार 15 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार

0: इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, श्रद्धा प्रेम और विश्वास से भाव पैदा होता है, भाव से ही भक्ति होती है और जहां मैं मिट जाए वस्तु ही दूर रह जाए वहीं पे भक्ति रस का जन्म होता है। इसी भावना के साथ आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे शिव शंकर, आप अनंत अनादि देवों के देव महादेव हो। आप अजर अमर अविनाशी हो। आपको हम बारंबार नमन करते हैं।

माखन च नंद किशोर बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी पूछती जिने दुनिया सारी, ऐसी है लीला मेरे घनश्याम की।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे अनुप जलोटा, मोहम्मद रफी, श्रुति सडोनीकर और साथियों के। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार।
1: डॉक्टर राधाकृष्णन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के मनीषी थे। अपनी विशिष्ट बहुमुखी प्रतिभा, अध्ययनशील प्रवृत्ति एवं प्रभावशील अद्भुत व्यक्तित्व से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उतना ही गरिमामय और विवेकमय योगदान दिया जितना कि भारतीय दर्शन की धारा को विश्व में प्रसारित करने में। डॉ. राधाकृष्णन ने आधुनिक काल के दर्शन के क्षेत्र में भारतीय दर्शन को उसका उचित और सम्माननीय स्थान दिलाने का भगीरथ प्रयत्न किया। डॉ. राधाकृष्णन ने अपनी एक पुस्तक में कहा है कि वो समाज को एक ऐसे श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित रूप में विकसित होते हुए देखना चाहते हैं जहां उच्च आदर्श हों, मानवता के श्रेष्ठ गुण हों तथा जिस श्रेष्ठ समाज के मनुष्य संकीर्णता और आडंबरों में अपना अमूल्य जीवन और महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ न करते हों। उनकी अवधारणा है कि मानव ही ईश्वर का प्रतिरूप है। सभी नर नारी उस महान शक्ति के अंश हैं जो अंतर हम देखते हैं और समझते हैं। वो सब तो मानवकृत हैं। ईश्वर तो बिना भेदभाव के प्राणी मात्र में उसकी आत्मा के रूप में अवस्थित है। ऐसा भाव शिक्षा के माध्यम से न केवल उत्पन्न ही किया जा सकता है बल्कि इसमें दृढ़ता भी शिक्षा से ही संभव है क्योंकि शिक्षा ही मानव विचारों की जननी है। डॉक्टर राधाकृष्णन वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में दृढ़ आस्था रखते हैं। उनका विचार है कि संसार के सभी प्राणी एक परिवार के सदस्य हैं।

0: इसलिए स्वार्थपरता की भावना छोड़कर सबके हित चिंतन के साथ साथ सभी को सबकी सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीयता को समान दृष्टि से देखना चाहिए। किंतु आज का मानव अत्यंत भौतिकतावादी हो गया है। स्वार्थ की पट्टी ने उसकी आंखों को बंद कर दिया है। इसलिए आज जरूरत है जन कल्याण को दृष्टि में रखते हुए हम शिक्षा के प्रसार को महत्व दें। इसके द्वारा ही विश्व बंधुत्व की भावना विकसित हो सकेगी। डॉक्टर कृष्णन नैतिकता को भी अनिवार्य मानते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मनुष्य के सामाजिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास का आधार नैतिकता है। इसलिए शिक्षा का मूल आधार भी नैतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। उनका कहना है, शिक्षा और धर्म का संबंध उसी प्रकार है जिस प्रकार शरीर और आत्मा का। यदि धर्म को शिक्षा से अलग कर दें तो हमारी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी। मानव जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है हृदय की पवित्रता, चित्त की शांति, और वो तो हमें धर्म से ही प्राप्त होगी। वो धर्म को शिक्षा से ही नहीं, मानव से भी संबंध मानते हुए कहते हैं कि धर्म पूर्ण मानव की पूर्ण सत्ता के प्रति प्रतिक्रिया है। मानव की पूर्ण क्रिया को ही धर्म का नाम दिया जा सकता है। सत्य, शुभ और शिव अलग से धार्मिक अनुभूति नहीं पैदा करते हैं, किंतु उनका समन्वय एक उच्च धरातल पर मानव को ले जाता है जिसे आध्यात्मिक धरातल की संज्ञा दी जा सकती है। कर्म सिद्धांत पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए डॉ. राधाकृष्णन का कथन है कि अनंत भूतकाल से चला आ रहा मानव इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि वो वर्तमान में जीता है और भविष्य से जुड़ा रहता है। मानव का विकास एक सुनियोजित ढंग से होता है और वो कर्म सिद्धांत से अनुप्राणित रहता है।
1: कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं।

अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। कार्यक्रम खेती की बाती में 6:45 पर सुनी जा सकेगी धान की उन्नत किस्म और पौध की तैयारी के विषय में डॉक्टर आरपी सिंह की वार्ता। प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर एस के कठारिया पायरिया रोग के विषय में जानकारी देंगे। पूनम वशिष्ठ के गाय लोकगीत हम आपको सुन पाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर। प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एलके पंडित का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन। 11:00 आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री किरण खेर के बारे में और सुनवाएंगे उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा के विषय होंगे बुजुर्गों को दीजिए सम्मान। एक और विषय पर चर्चा होगी विषय होगा स्वच्छ सर्वसुलभ और अक्षय ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा और 12:00 सुने का प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। श्रोताओं दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में आप सुनेंगे डॉक्टर सुमन शर्मा की वार्ता जिसका

अवश्य होगा। परिवार के शक्तिपुंज हमारे बुजुर्ग, इसी कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा बुजुर्गों के अनुभव, समाज की अमूल्य धरोहर। मेरी माटी मेरा देश का विषय होगा पवन ऊर्जा और भारत का हरित भविष्य। कविता शर्मा की कई कस्ते हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा में फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में 5:30 पर आप सुनेंगे बदलते पारिवारिक ढांचे में बुजुर्गों की चुनौतियों के विषय में अनम की वार्ता। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत। चर्चा का विषय होगा ग्रीन जॉब्स और नई पहल के तहत हम जानकारी देंगे लावारिस संपत्ति पोर्टल के विषय में। 6:00 ग्रामीण कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी खरीफ फसलों की तैयारी के विषय में जगवीर सिंह की वार्ता। इसी कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ चर्चा का विषय होगा गांव के विकास में पंचायतों की भूमिका, साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। 6:30 पर मस्तूर मंडल कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ हम चर्चा करेंगे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के बारे में। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा डॉक्टर सुनीता सक्सेना की वार्ता जिसका विषय होगा टूटते परिवार बिखरता व्यक्तित्व। और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित मणि प्रसाद का राग कौशिक ध्वनि में ख्याल गायन। श्रोताओं अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रही थी। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक माया नगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस माया नगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम खेती की बातें में आइए आपको सुनवाते हैं धान की उन्नत किस्म और पौध की तैयारी के विषय में डॉक्टर आरपी सिंह की वार्ता।
1: किसान भाइयों, धान देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अपने देश की चीन 3/4 जनसंख्या का जीवन यापन धान पर ही निर्भर है, अतः यह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। दूसरे प्रदेशों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में धान का औसत उत्पादन काफ़ी कम है, जिसे हम धान की उन्नत किस्मों के अच्छे बीजों को प्रयोग कर अच्छी पौध प्राप्त कर लगाने से बढ़ा सकते हैं। उन्नत किस्मों के बीजों में देसी प्रजातियों के बीजों की तुलना में उत्पादन देने की क्षमता अधिक होती है। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि आज इस वार्ता के माध्यम से बताए अनुसार धान की उन्नत किस्मों द्वारा अच्छी पौध तैयार कर अपना धान का उत्पादन बढ़ाएं। यूँ तो धान की बहुत सारी किस्में इस समय बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन आगरा मंडल में धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए समय से पकने वाली किस्मों में साकेत 4, गोविंद, अश्विनी, रत्ना, नरेंद्र 80, पंत धान 12 व IR 50 प्रमुख हैं। इसका अर्थ है कि ये किस्में लगभग 100 से 120 दिनों में पक कर तैयार हो जाती हैं। इन किस्मों में से अश्विनी तो 96 से 110 दिन में ही पक कर तैयार हो जाती है। इन किस्मों से 45 से 60 कुंतल प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार प्राप्त की जा सकती है। मध्यम समय में पकने वाली किस्मों में इस क्षेत्र के लिए जया, पंत धान 4, सरजू 52, PNR 381, IR 8, क्रांति तथा पंत 10 प्रमुख हैं। ये सभी किस्में 120 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। इनमें से पंत धान 4 व 10 तथा जया प्रजातियों का चावल महीन, सफ़ेद व लंबा होता है तथा औसत पैदावार 50 से 60 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक ली जा सकती है। देर से अर्थात जो किस्में पकने में 140 से अधिक समय लेती हैं, इन प्रजातियों में आगरा मंडल के लिए टाइप 9

टाइप 23, टाइप 100 तथा क्रॉस 116 प्रमुख हैं। इन किस्मों से औसत पैदावार 30 से 35 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। जो किसान भाई सुगंधित अर्थात खुशबू वाला धान उगाना चाहते हैं, वे टाइप 3, कस्तूरी, पूसा बासमती, हरियाणा बासमती तथा बासमती 370 में से कोई भी किस्म उगा सकते हैं। इन किस्मों की औसत पैदावार 30 से 40 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। इन किस्मों को उगाने से धान की कीमत काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जिससे आपको अधिक लाभ होता है। किसान भाइयों, आगरा मंडल के कुछ जिलों में ऊसर की भी समस्या है। ऊसर वाले क्षेत्रों के लिए ऊसर

0: समस्या है। ऊसर वाले क्षेत्रों के लिए ऊसर सुधार के तुरंत बाद CSR 10 ऊसर धान 1 नरेंद्र ऊसर धान 2 व स्वर्ण आदि उन्नत किस्मों में से जो कि ऊसर सुधार के बाद लेने से अच्छी पैदावार दे देती हैं। राजा बलवंत सिंह कॉलेज के अवागढ़ परिसर पर कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पर ऊसर सुधार के बाद क्रांति किस्म से भी काफ़ी अच्छी पैदावार प्राप्त की गई है। जिन किसान भाइयों के खेतों में जल भराव की समस्या है वे धान की टाइप 100 किस्म को लगाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। धान की कुछ संकर किस्में भी विकसित की गई हैं जिनमें प्रमुख है पंत संकर धान 1 अथवा UPHR 27 तथा नरेंद्र संकर धान 2 जिसे NDRH 2 भी कहते हैं। ये दोनों किस्में 120 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं तथा इनसे 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार आसानी से प्राप्त की जा सकती है। किसान भाई इसके बीज के प्रयोग में विशेष ध्यान यह रखें कि संकर किस्मों का बीज हर साल नया बोने से ही अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। केवल अच्छी किस्मों के बीज का प्रयोग करने से ही पैदावार में 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। अतः आप अपनी जमीन बुवाई के समय आदि को ध्यान में रखते हुए उचित किस्म का चयन कर लें, लेकिन ध्यान रखें कि बीज हमेशा विश्वसनीय स्थान से ही खरीदना चाहिए तथा बीज की पैकिंग पर बीज की अंकुरण क्षमता प्रतिशत तथा टैग अवश्य देख लेना चाहिए। धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए आवश्यक है कि आपको पौध अच्छी प्रकार से तैयार करनी चाहिए। नर्सरी हमेशा अच्छी जमीन में तैयार करनी चाहिए। नर्सरी वाले खेत के पास सिंचाई की समुचित साधन भी आवश्यक है क्योंकि धान की पौध गर्मी में तैयार की जाती है जिससे पानी की मात्रा और भी बढ़ जाती है। साथ ही किसान भाई धान की पौध ऐसे खेतों में कभी भी तैयार न करें जहां पेड़ों की छाया रहती हो या उन खेतों में पुआल इकट्ठा किया गया हो, क्योंकि छाया वाले खेतों में धान की पौध पर झोंका रोग का प्रकोप हो सकता है व धान का पुआल इकट्ठा करने वाले खेतों में फसल पर भूरा धब्बा रोग अधिक लगता है। एक हेक्टर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए लगभग 700 वर्ग मीटर भूमि में नर्सरी डालनी चाहिए जबकि ऊसर के लिए 1000 वर्ग मीटर भूमि में पौध डालनी चाहिए। 700 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए महीन धान का 30 से 35 किलोग्राम, मध्यम धान का 35 से 40 किलोग्राम व मोटे धान का 45 से 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ऊसर के लिए बीज की मात्रा 60 किलोग्राम रखनी चाहिए। यदि आप धान की सीधी बुवाई करना चाहते हैं तो 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नर्सरी में बीज डालने से पहले बीज का उपचार करना न भूलें। 25 किलोग्राम बीज के लिए 19 किलोग्राम MEMS 6% वाली अथवा 38 ग्राम MEMS 3% वाली तथा 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 45 लीटर पानी में घोलकर बीजों को रात भर भिगो दें। दूसरे दिन छाया में सुखाकर शाम के समय नर्सरी में बुवाई करनी चाहिए। नर्सरी में बीज की बुवाई प्रजाति के हिसाब से जून के प्रथम सप्ताह से 25 जून तक करनी चाहिए। बुवाई से पूर्व खेत को अच्छी प्रकार तैयार कर लें। साधारणतः 8 मीटर लंबी व 1.25 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेनी चाहिए व हर क्यारी के बाद 1 फुट की नाली बनानी चाहिए जिससे पौध नराई व दवा के प्रयोग में आसानी रहती है। नर्सरी में पौध तैयार करते समय 20 किलोग्राम यूरिया या 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 35 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट व 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% वाली प्रति 1000 वर्ग मीटर की दर से प्रयोग करने से अच्छी पौध प्राप्त होती है। इस तरह किसान भाई धान की उन्नत किस्मों की नर्सरी तैयार कर पौध लगाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुनी धान की उन्नत किस्म और पौध की तैयारी के विषय में।

डॉक्टर आरपी सिंह की वार्ता। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

0: शोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जून मासस्य 15 दिनांके अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवा राज्ये 26,000 वैश्विक वायु दिवस सम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानाम् आईसीसी 20-प्रति-20 विश्वचषक क्रीडायां वर्मिंघम नगरस्य एजवेस्टन नगरे ग्रुपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 64 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया।

जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं पायरिया रोग के विषय में डॉक्टर एस के कठारिया की वार्ता।
1: अभी तक दंत स्वास्थ्य से अभिप्राय दांतों में कीड़ा लगने के बचाव व उपचार से जोड़ा जाता रहा है। पायरिया, जो कि मसूड़ों व दांतों को सहारा देने वाली हड्डी व रेसों पर जीवाणुओं के प्रकोप से होता है, युवावस्था में अधिकतर प्राकृतिक दांत खो देने का कारण पायरिया होता है। प्रायः सभी लोग पायरिया रोग से ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि पायरिया रोग को कैसे पहचाने, यह रोग क्यों होता है और इसे कैसे बचाया जा सकता है। पायरिया रोग मसूड़ों, दांतों को सहारा देने वाली हड्डी व जड़ों व दांतों की हड्डी को बांधने वाले रेशों पर प्रकोप डालता है। मसूड़ों तक सीमित इस बीमारी को जिंजिवाइटिस कहते हैं व मसूड़ों के नीचे जड़ों को सहारा देने वाली हड्डी तक फैली इस बीमारी को पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। यह बीमारी विशेष रूप से दांतों के हिल हिल कर गिर जाने का मुख्य कारण होती है। यह रोग विशेष रूप से 25 वर्ष की आयु के बाद प्रकोप डालता है। इस बीमारी में अधिकतर दांत गिरने लगते हैं क्योंकि हड्डी व मसूड़ों में गलाव के कारण ढीले हो जाते हैं। मुंह के जीवाणु, जिन्हें हम दांतों व मसूड़ों पर से ठीक से नहीं हटा पाते हैं, पायरिया का मुख्य कारण है। हम सबके मुंह में असंख्य जीवाणु होते हैं। सामान्यतः इन जीवाणुओं से कोई तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ तब शुरू होती है जब दांतों और मसूड़ों से इन जीवाणुओं को कम से कम दिन में एक बार ठीक से हटाने में असमर्थ हों। यदि दिन भर दांतों को ब्रश से साफ न किया गया तो जीवाणु डेंटल प्लाक की अवस्था में मसूड़ों और दांतों पर इकट्ठा हो जाते हैं। इनकी प्रारंभिक परत को आँखों से देखा नहीं जा सकता है, परंतु इस प्लाक के कारण मसूड़े सूजने लगते हैं और दांत व मसूड़ों के बीच में जगह बन जाती है। इस जगह में और ज़्यादा से ज़्यादा प्लाक इकट्ठा होने लगता है और मसूड़े ज़्यादा सूजते चले जाते हैं। पायरिया रोग में अक्सर दर्द नहीं होता है और किसी को भी इसकी शुरुआत का पता नहीं लग पाता है। वास्तव में 3 युवकों में से 2 को कुछ न कुछ पायरिया अवश्य होता है, जिनके बारे में उनको इसकी जानकारी नहीं होती है। दांत के डॉक्टर को दिखाकर पता लगाया जा सकता है कि उनको पायरिया है या नहीं। आसानी से घर पर पहचानने वाले लक्षण हैं लाल सूजे हुए मसूड़ों से आसानी से खून निकलना। यदि इस प्रारंभिक अवस्था का उपचार न किया जाए तो यह रोग दांतों को सहारा देने वाली हड्डी तथा रेशों को बांधने वाले तंतुओं तक फैल सकता है, जिससे सब कुछ ये नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस बीमारी में दांतों को सहारा देने वाली हड्डी और रेशे गल जाते हैं, इसलिए दांत धीरे धीरे अपनी हड्डी के स्थान पर न रहने से ढीले लगने लगते हैं। बीमारी जितनी गहराई तक पहुँचने लगती है उतने ही मवाद बनने की संभावना अधिक होती है। इस अवस्था में मसूड़ों में दर्द होने लगता है। दांतों में कीड़ा लगना और पायरिया का कोई सीधा संबंध नहीं है। पायरिया की रोकथाम के लिए प्रतिदिन दांतों व मसूड़ों को ठीक तरह से साफ करना चाहिए। दांतों की सफाई सामान्यतया टूथब्रश से की जानी चाहिए, लेकिन जहाँ पर

0: टूथ ब्रश उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर नीम तथा बबूल की दातून को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पायरिया की देखभाल के लिए इसकी देखरेख कम उम्र से ही शुरू कर देनी चाहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी पायरिया रोग के विषय में डॉक्टर एस के कठारिया की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में ये देशगान।

0: श्रोताओं, हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही क्षणों में।
1: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने

0: हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही है वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
3: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
2: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ उन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
4: श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
2: मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में कल शाम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को अत्याधुनिक विषयों में दक्ष बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और उनके संघर्ष को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में

0: पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
1: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ाने शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं।
3: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बाराबंकी जिले में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। वहीं अम्बेडकर नगर जिले में पहुँचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदली है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार GST, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही हैं वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियमली 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। और अब शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। श्रोताओं, बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद अब राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए सत्र के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू है। इस बार प्रवेश प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे ग्रामीण युवाओं को अधिक लाभ हो। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने आरक्षण व्यवस्था को बरकरार रखते हुए ब्लॉक स्तर पर 25% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। इस बदलाव का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को उनके अपने इलाके में ही तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना है। इससे वे घर के पास पढ़ाई कर सकेंगे और बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पा सकेंगे। श्रोताओं, जिले में 5 सरकारी और 120 से अधिक प्राइवेट आईटीआई हैं, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र दाखिला लेते हैं और सैकड़ों सीटें खाली रह जाती हैं। लेकिन नई व्यवस्था में अगर कोई छात्र प्रवेश के बाद दाखिला नहीं लेता है तो उस सीट को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। अंतिम तिथि के बाद रिक्त सीटों पर दूसरे पात्र अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। ये व्यवस्था हाल ही में जारी परिषद की ओर से जारी निर्देश के तहत लागू की गई है। एससीवीटी के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। प्रवेश हाईस्कूल के अंकों के आधार पर मेरिट से होगा। इस बार राज्य, जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी और जून के अंत में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। श्रोताओं, नई व्यवस्था के तहत आईटीआई को आधुनिक बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं और छात्रों को एआई आधारित प्रशिक्षण देने की भी तैयारी है।

शुरू 3 दिवसीय फूड एक्सपो और कॉन्क्लेव 2026 की शुरुआत रविवार को होटल जेपी पैलेस में हुई। खाद्य प्रसंस्करण, कृषि तकनीक, पैकेजिंग, निर्यात, कोल्ड चेन और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को समर्पित एक्सपो में नवाचार, उद्यमिता की चमक बिखरी और लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा को भी मंच मिला। इसमें तेल, आटा, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, पीठा, आइसक्रीम, बबल टी, हींग, फूड कलर और आधुनिक फूड तकनीकी के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने रहे। एक्सपो में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली की कंपनियों और फर्मों ने 150 से अधिक स्टॉल लगाए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन का सबसे प्रभावी माध्यम है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी और फूड एक्सपो में कृषि और उद्योग के बीच सशक्त सेतु बनेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये फूड एक्सपो 3 दिन के लिए है, जो कि कल शुरू हुआ। और आज के सत्र में क्या क्या खास होगा? पहले सत्र में प्रदेश में डेयरी उद्योग की संभावनाओं पर विमर्श होगा। दूसरे सत्र में तकनीकी सत्र में एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और निवेश के अवसरों पर चर्चा की जाएगी। इसी तरह तीसरे सत्र में नया उत्तर प्रदेश, नई उड़ान, बैंकिंग सहयोग से सशक्त उद्योग पर आधारित होगा। चौथे सत्र के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत और कौशलयुक्त उत्तर प्रदेश के लिए सशक्त एमएसएमई पर चर्चा होगी। और आखिरी पांचवें सत्र में खाद्य सुरक्षा, सेल्फ लाइफ, खाद्य रंगों की गुणवत्ता और मानकों पर चर्चा की जाएगी।

शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष आरंभ कल से शुरू होंगे मांगलिक कार्य। जी हां श्रोताओं, ज्येष्ठ इस बार अधिमास के चलते दो मास का है। अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या 15 जून को मिल रही है। इसके साथ पुरुषोत्तम मास का समापन हो जाएगा और शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 16 जून से आरंभ होने के साथ ही मांगलिक कार्यों का भी प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि लग्न मुहूर्त के दिन 19 जून से मिलेंगे जो 11 जुलाई तक चलेंगे। देवगुरु बृहस्पति आषाढ़ शुक्ल एकादशी 15 जुलाई को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। इससे मांगलिक कार्यों पर फिर विराम लग जाएगा। देवगुरु का उदय 10 अगस्त को पूर्व दिशा में होगा। इस तरह चातुर्मास की 10 दिन पहले गुरु अगस्त होने से विवाह मुहूर्त पर विराम लग जाएगा। इस बार चातुर्मास आरंभ देवगुरु बृहस्पति के अस्त काल में होगा। ऐसा योग कई दशकों के बाद होगा और चातुर्मास का आरंभ 25 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर होगा और भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और 4 माह बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी 20 नवंबर को हरि प्रबोधिनी एकादशी पर श्रीहरि योग निद्रा से जाग जाएंगे। इस तरह 25 जुलाई से 20 नवंबर तक चातुर्मास पर्यंत 4 माह तक मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा और श्रीहरि के जागरण के बाद 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक शादी विवाह के लग्न मुहूर्त फिर से मिल पाएंगे।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। श्रोताओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 की विधि पाठ्यक्रमों की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए आंतरिक परीक्षक नामित करने हेतु स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों से शिक्षकों का विवरण मांगा है। विश्वविद्यालय ने एलएलबी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और बीए एलएलबी तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ष की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज 18 जून तक जमा करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित महाविद्यालयों को अनुमोदित प्राचार्य और विषयवार अनुमोदित शिक्षकों से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। दस्तावेज खंडारी परिसर स्थित बेसिक विज्ञान संस्थान के रसायन विज्ञान विभाग में जमा कराए जाएंगे। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्राचार्य प्राचार्या के अनुमोदन पत्र की प्रति चाहिए होगी। इसी तरह विश्वविद्यालय से अनुमोदित विषयवार शिक्षकों की सूची और उनके अनुमोदन पत्रों की छाया प्रति चाहिए होगी। संबंधित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र तथा कार्यभार ग्रहण यानी कि ज्वाइनिंग पत्र की प्रति चाहिए होगी और विगत 5 वर्षों के वेतन भुगतान से संबंधित बैंक स्टेटमेंट की प्रति भी देनी होगी।

डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 20 जून को आयोजित होगी। प्रवेश पत्र 17 जून को जारी किए जाएंगे। 1400 से अधिक सीटों के लिए 4000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। विद्यार्थियों के लिए एक और सूचना है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत नीलीट मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल और ट्रिपल सी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 16 जून से 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जो लोग रेल यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए कुछ सोचना है। रेलवे ने प्रयागराज दादर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 10 जुलाई तक प्रयागराज से प्रत्येक शुक्रवार और 12 जुलाई तक दादर से प्रत्येक रविवार को ये ट्रेन संचालित होगी। ये ट्रेन प्रयागराज से ईदगाह स्टेशन होते हुए जाएगी। श्रोताओं, इसके साथ साथ रेलवे ने मुंबई सेंट्रल काठ गोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नियमित संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से बुधवार और काठ गोदाम से गुरुवार को चलेगी। ये मथुरा जंक्शन होकर संचालित होगी और इसमें एक सेकेंड

परीक्षार्थियों के लिए कुछ और सूचनाएं हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के छात्र अपनी काव्य की प्रतिभा दिखा सकेंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय काव्य उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता राष्ट्रीय ई पुस्तकालय प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन 31 जुलाई तक चलेगी।

परीक्षार्थियों के लिए कुछ और सूचनाएं हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के छात्र अपनी काव्य की प्रतिभा दिखा सकेंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय काव्य उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता राष्ट्रीय ई पुस्तकालय प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन 31 जुलाई तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों को राष्ट्रीय ई पुस्तकालय प्लेटफॉर्म पर दी गई सूची से एक कविता चुनकर उसका 60 से 90 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा और इस वीडियो को निर्धारित हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद छात्रों को राष्ट्रीय ई पुस्तकालय की वेबसाइट या ऐप पर सबमिट करनी होगी। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में पढ़ने की आदत, साहित्य के प्रति रुचि और रचनात्मक संचार कौशल का विकास करना है।

श्रोताओ, आइए अब आपको जानकारी दे दी कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में। फुलगम पत्नी संजीव कुमार निवासी दुलबजा थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी से दिनांक 12 मई 2026 से लापता है। फुलगम की उम्र 28 वर्ष, कद 5 फुट और रंग कोरा है। गुमशुदगी के समय फुलगम ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना एलाऊ मैनपुरी के पते पर सूचित करें।

एक अन्य सूचना के अनुसार प्रियंका पत्नी ब्रजेश निवासी शंकर टॉकीज वाली गली स्टेशन रोड कोतवाली मैनपुरी से दिनांक 14 मई सन 2026 से अपने 6 वर्षीय पुत्र शशांक के साथ लापता है। प्रियंका की उम्र 34 वर्ष, कद 5 फुट, चेहरा गोल और रंग गोरा है। गुमशुदगी समय प्रियंका ने नीला सूट और काली चप्पल पहनी हुई थी। प्रियंका और उसके 6 वर्षीय पुत्र शशांक के विषय में आपको कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया थाना स्टेशन रोड कोतवाली मैनपुरी के पते पर सूचित करें। मैनपुरी से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार गौरी पत्नी रविंद्र कुमार निवासी नगला कादर थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी से दिनांक 8 मई सन 2026 से लापता है। गौरी की उम्र 20 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच और रंग गोरा है। गुमशुदगी के समय गौरी ने साड़ी पहनी हुई थी। गौरी के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना एलाऊ मैनपुरी के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

और अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। श्रोताओं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 4,500 अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों में भर्तियां की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को एक वर्ष का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 22 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता हो। उम्मीदवार जिस भी राज्य के लिए आवेदन करे उसकी स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 20 और अधिकतम 28 वर्ष से कम हो और आयु की गणना 31 मई 2026 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में एसएससी, एससी एसटी वर्ग को 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। पुनः बता दें, आयु सीमा में एससी एसटी वर्ग को 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष

दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूटी जाएगी। चयन प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन परीक्षा, क्षेत्रीय भाषा परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर चयन किया जाएगा। चलिए अब आपको जानकारी दे दें कि इसका आवेदन आपको कैसे करना है। बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाएं। पुनः नोट कर लें, centralbankofindia.co.in पर जाएं। होम पेज पर सबसे ऊपर करियर विद अस के सेक्शन में करंट वैकेंसीज पर क्लिक करें। अब खुलने वाली पेज पर नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर के नीचे क्लिक हियर फॉर डिटेल्स पर क्लिक करें। अब नए पेज पर विज्ञापन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इससे पढ़ लें और अपनी योग्यता की जांच कर लें। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन के नीचे ही क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन नेट्स पर क्लिक करें। अब नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वेबसाइट nats.education.gov.in का पेज खुल जाएगा। पुनः नोट कर ले, nats.education.gov.in। यहां होम पेज पर सामने ही दो विकल्प दिखाई देंगे। इनमें से रेगुलर स्टूडेंट्स फॉर डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास आउट स्टूडेंट्स पर क्लिक करके आगे की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। हम आपको पुनः जानकारी दे दें, इस पर ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 22 जून 2026 है।

और इसी के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
6: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
4: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय

0: आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
4: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
5: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
4: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क

0: 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चलेगी।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है, वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
2: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बर्तिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं जी सरबराह 7 कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जेवर में नोएडा बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। अमेरिका और ईरान ने 107 दिन से जारी जंग खत्म करने और आबनाए हुरमुज खोलने के मकसद से एक समझौते को कतई शक्ल दी है। आबनाए हुरमुज एक तंग आबी गुजरगाह है जहां से आलमी तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल पर एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। इस अमन मुआहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, जहां ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज इस मुआहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद जुमे को खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत पूरे खित्ते में अमन सलामती कायम होगी। इस मुआहदे में अमरीका और ईरान से कहा गया है कि वो ईरान की न्यूक्लियाई अफजूदगी और उसकी इंतहाई ताकतवर यूरेनियम के खात्मे पर 60 दिन के अंदर अंदर मुज़ाकरात करें। ईरान की कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल ने कहा है कि लिबनान समेत सभी महाजों पर फौजी कार्रवाई आज रात से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। खबरों के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी आ गई है। ब्रंट खाम तेल में आज सुबह 4% की कमी वाकई हुई, जबकि अमेरिका का वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट 4.6% से भी ज्यादा गिर गया। इधर एशिया में स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। दुनिया के रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते का खैर मकदम किया है और इसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है, जिससे मगरबी एशिया में अमन की बहाली में मदद मिल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी बर्तिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी स्लोवाकिया के सदर पीटर पेरेगिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद स्लोवाकिया के 2 रोजा सरकारी दौरे पर कल रात बर्तिस्लावा पहुंचे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का एक अहम मौका फराहम करता है और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के नए मौके तलाश करने में मददगार साबित होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा कि वह स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेगिनी और वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिको के साथ सूदमंद मुज़ाकरात के मुंतजिर हैं। 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का इस मुल्क के लिए यह पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म की यह दौरा अप्रैल 2025 में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया के दौरे के बाद हो रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल रात राजधानी ब्रतिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के वजीर खारजा जुराज ब्लेनर ने शानदार खैर मकदम किया। किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का स्लोवाकिया का यह पहला सरकारी दौरा है। ब्रतिस्लावा पहुंचने पर गैर मुकीम भारतीय बिरादरी के लोगों ने नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। स्लोवाकिया के मूसीकारों ने वज़ीर-ए-आज़म के पहुंचने पर वंदे भारत वंदे मातरम की धुन बजाई। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज से स्मृति एम पलुर्ती की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: 52वीं जी

0: सेवन सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू हो रही है। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में G7 के सभी रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बर्तानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। अरकान के अलावा फ्रांस ने आउटरीच शराकतदार मुल्कों की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, जनूबी कोरिया, कतर, सऊदी अरब, मुल्क शाम, यूक्रेन और मुत्तहदा अरब अमारात को भी मदु किया है। ये 13वां मौका होगा जब भारत एक शराकतदार मुल्क की हैसियत G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आउटरीच इजलास में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम की शिरकत से आलमी जोग्राफियाई सियासत में भारत का अहम रोल उजागर होता है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हो रही है जब दुनिया को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, माशी गैर यकीनी सूरत हाल और नई टेक्नोलॉजी की तेजी से इर्तका के चैलेंज दरपेश हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जैसे ही इजलास शुरू होगा तो आलमी अदम तवाजुन को कम करना मेजबानी करने वाले मुल्क की G7 सदारत सबसे अहम तरजीह बन जाएगा। सरबराह कॉन्फ्रेंस के सरकारी फ्रेमवर्क के मुताबिक G7 के रहनुमा जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस, बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती, बाहमी इक्तिसादी तरक्की और अहम आलमी बहरान पर तबादले ख्याल करेंगे। ये तबादले ख्याल बंद कमरों में होंगे जो आज से शुरू हो रहे हैं। सरबराह इजलास में भारत की शिरकत आलमी जनूब की तरजीहात और तशवीश को उजागर करने के लिए एक मौका फराहम करेगी, जबकि अहम आलमी मसाइल पर भी मुजाकरात होंगे। फ्रांस से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में वाकई नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों की खिदमत आज से शुरू हो गई हैं। जेवर हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए पहली परवाज ने थोड़ी देर पहले उड़ान भरा। इस परवाज में MLA धर्मेंद्र सिंह 20 खवातीन समेत 172 किसानों के साथ हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीन एयरपोर्ट के लिए हासिल की गई थी। लखनऊ पहुंचकर ये किसान वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इंडिगो एयरलाइन की पहली परवाज लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट के लिए सुबह 7:05 पर रवाना हुई। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली बाकायदा कमर्शियल परवाज चलाई जाएगी।
2: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का इफ्तिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी तकरीबन 3300 एकड़ जमीन हासिल की गई है। पहले मरहले में 1,20,00,000 मुसाफिरों की सलाहियत वाले इस एयरपोर्ट से मुस्तकबिल में 22,50,00,000 मुसाफिरों को सहूलियत फराहम की जा सकती है। ये मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी रियासतों के लिए एक नई हवाई कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो की परवाजें लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज्यादा शहरों के लिए शुरू होने वाली हैं। दीगर एयरलाइंस की परवाजें भी जल्द शुरू होंगी। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए हवाई अड्डे से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनमें 90 जनरल और 10 डबल डेकर बसें शामिल हैं। लखनऊ से खबरनामे के लिए सुशील चंद्र तिवारी।
0: इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने अंडर ग्रेजुएट तिब्बी तालीम के दाखिले के लिए NEET UG के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार NTA की सरकारी वेबसाइट neet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NEET UG के दोबारा इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराए जाएंगे, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होंगे। NTA ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते की तफसीलात की तस्दीक करें। उसने उम्मीदवारों को यह भी मशवरा दिया है कि वह हिदायत पर अमल करें और साथ ही इतिलानामे पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। भारत में पिछले 12 साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के वसूलों पर मबनी काबिले जिक्र तब्दीलियां हुई हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए गए। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के मौजू के उन्वान से एक खसूसी फीचर नशर कर रहा है। आज हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के तस्वुर के साथ जदीद बुलंद ढांचा तामीर करने के सरकारी इकदाम पर नजर डालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: किसी मजबूत और जदीद मुल्क की तामीर आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे पर मबनी होती है। पिछले 12 साल में भारत ने यकसर तब्दीली का एक बेमिसाल सफर तय किया है, जिसके तहत बुनियादी ढांचे पर सरकारी अखराजात में

0: 6 गुना इजाफा किया गया है। इस तरह 2014-15 ये अखराजात 2 लाख करोड़ रुपए के थे, जबकि रवा माली साल में ये अखराजात 12.2 लाख करोड़ रुपए के हो गए। मुल्क के शहरी ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाब लाया गया। भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क को तकरीबन 5 गुना तौसी दी गई। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली की अलीशा ने, जो दिल्ली मेट्रो से रोजाना सफर करती हैं, अपने सफर के तजुर्बे के बारे में बताया।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत में आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। कौमी शाहराह नेटवर्क में इजाफा करके इसे 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। रेलवे के शोबे में भी बड़ी तब्दीलियां नुमाया हैं। भारतीय रेलवे से मुतालिक बजट में तकरीबन 9 गुना इजाफा कर दिया गया है, जिससे इस पूरे नेटवर्क में जदीदकारी की गई है और मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया की गई है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए लखनऊ से वंदे भारत की एक मुसाफिर पूजा ने कहा कि ये ट्रेन बहुत आरामदेह है, जिससे वक्त की भी काफी बचत होती है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि सफर करने में टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे भी पसंद आए, क्योंकि इसकी वजह से यात्रियों की सुरक्षा बनी रहती है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
3: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 19वां मुंबई बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल MIFF आज से शुरू हो रहा है। शाम को मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में फिल्म फेस्टिवल की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी, जबकि सुबह से ही फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इस साल मुकाबला जाति जुमरे में 52 बैन अल-अक़वामी और 92 कौमी फिल्मों में समेत कुल 144 फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि 13 मुल्कों के फिल्म साज फिल्म फेस्टिवल में नुमाइंदगी कर रहे हैं। गैर मुकाबला जाति जुमरे में शिरकत करने वाले 46 मुल्कों की 106 बैन अल-अक़वामी फिल्मों और 96 कौमी फिल्मों समेत कुल 202 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फौजदारी तहकीकती महकमे ने तृणमूल कांग्रेस के मेम्बर पार्लियामेंट अभिषेक बैनर्जी से 9 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की है। ये पूछताछ उनसे पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के जाली दस्तखत के एक केस में उनके मुबैना तौर पर मुलविस होने के सिलसिले में की गई है। बर्मिंघम में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के ग्रुप ए के पहले मैच में भारत ने कल रात रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे, जिसमें स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नष्ट होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे योगा से मुतालिक प्रोग्राम नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन सेहत और योगा से मुतालिक इस मौजू पर अपने सवाल टेलीफोन नंबर पर पूछ सकते हैं 011-233-1084-1, 011-237-1117-106। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
4: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे फ्रांस को अहमियत के साथ शाया करते हुए वजीर आजम के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत टेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने आलमी सरमायाकारों, महققین और सनअतकारों को भारत के साथ मिलकर काम करने की दावत दी। भारत के खलाई शोबे में नुमाया तब्दीली, ये हमारे कौमी शऊर का अहम हिस्सा बन चुकी है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
3: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे। 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जौर में नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान

के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियमली 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं प्रातः 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे जावेद अख्तर की शब्द रचना। स्वर दे अनुराधा पौड़वाल और अमित कुमार की फिल्म थी तेजाब।

शुदा दिल है तुम्हारा, इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू को। साथ दिया था उदित नारायण ने, बोल थे समीर के और संगीत निर्देशन था नदीम श्रवण का।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी

0: सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, कार्यक्रम गीतांजलि में अब लीजिए सुनिए सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक को। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों से सजाए है AR रहमान ने। फिल्म का नाम है ताल।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम का ये गीत है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के जगत स्वरों में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है संजीव दर्शन। फिल्म का नाम है ये रास्ते हैं प्यार के।

श्रोताओ, इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

0: का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए देवरिया और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है बृजेश चंद्र शर्मा का।
1: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा

0: शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत चयनित लाभार्थियों में स्वीकृत पत्र का वितरण किया गया। जिले में उत्तर प्रदेश आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा का आयोजन जिले में 12 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल सम्पन्न हो गया। विकास के क्षेत्र में जिले को प्रदेश का रोल मॉडल बनाने के लिए जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने अपने अधिकारियों के साथ बैठकें कर विकास की गति को और अधिक तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। विकास कार्यों का क्रियान्वयन पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। लापरवाही मिलने पर अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जल स्तर एवं वर्षा संबंधी आंकड़ों का नियमित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कटान रोधी परियोजनाओं को स्वसमय पूरा करने का स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिले की बाढ़ से संबंधित 3 तहसीलों में से बरहज व रुद्रपुर में बाढ़ आने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे में संभावित बाढ़ वाले क्षेत्र में सभी जरूरी एहतियातों को स्वसमय पूरा कर ले, जिससे कि आम जन को कोई समस्या न हो। बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर सिंचाई व बाढ़ विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिले के सलेमपुर, बरहज व रुद्रपुर तहसील में राज्य स्तरीय मार्ग एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस दौरान डूबे व्यक्तियों की खोज, बाढ़ के दौरान भवन ध्वस्त होने पर लोगों को बचाना आदि का सजीव प्रदर्शन किया गया।
1: हमारे जिले में बाढ़ विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा लगातार इसमें मॉनिटरिंग करके जो बाढ़ से बचाने हेतु तटबंध बनाने होते हैं उसके कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, ताकि हम लोग कोई कटान ना हो और कोई भी आम जनमानस को किसी भी तरह का कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। उसके साथ हमारी पूरी बाढ़ की तैयारी भी है, हमारे बाढ़ चौकी की तैयारी है, तो जिला पूरा तैयार है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आता है तो सिचुएशन को एक साथ जोड़कर फेस कर सकते।
0: विगत दिनों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। साथ ही जिले में 5,27,000 पौध रोपित किए जाने के लक्ष्य के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि जलवायु संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने एक पेड़ माह के नाम पौधा लगाने और उससे संरक्षित करने के लिए आह्वान किया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए 9 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में सभी जगहों पर सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और समाज के सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम पर लगा रहे हैं। केवल पेड़ ही नहीं लगाएंगे, बस इस पेड़ की सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी।
0: केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए संचालित महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर वृहद रूप से गर्भवती महिलाओं की जांच करते हुए उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गयी। इस दौरान 105 हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को चिन्हित करते हुए उचित परामर्श दिया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलकी ने सीएम डैशबोर्ड से संबंधित कार्य परियोजनाओं का समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्वक समयबद्धता के साथ परियोजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण में अनावश्यक विलंब पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत 14 ऐसे बच्चे जो कक्षा 9 अथवा उससे अधिक की कक्षाओं में अध्ययनरत है, उन बच्चों में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह द्वारा विकास भवन के गांधी सभागार में लैपटॉप वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधनों का उपयोग वे अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाते हुए अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जन जागरूकता जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी टीम भावना के साथ कार्य करें, जिससे कि योजनाओं का लाभ आम जन को मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी, शिक्षक एक साथ मिलकर टीम भावना के साथ कार्य करें। अभिभावकों में जन जागरूकता लाना जरूरी है। इसके लिए शिक्षक अभिभावक बैठकों का आयोजन नियमित रूप से करें और अधिक बच्चों का नामांकन प्रसिद्ध विद्यालयों में कराने के लिए प्रेरित भी करें।
3: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर तथा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में जनपद गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रसिद्ध देवालयों में रुद्राभिषेक पूजन आदि कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की कामना की एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति देते हुए गाँव में वृक्षारोपण भी किया गया। विगत दिनों 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर

0: आया। उस समय और दूना हो गया जब गाजीपुर के पलिया गांव निवासी उमेश राय पश्चिम बंगाल में तथा गाजीपुर के ही कमसड़ी गांव निवासी कौशिक राय असम में मंत्री बनाए गए। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने कहा कि गाजीपुर जनपद के इन प्रतिभाओं के विभिन्न प्रदेशों में मंत्री बनने से युवाओं में यह संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जहाँ एक साधारण कार्यकर्ता भारत के किसी कोने में पैदा होकर किसी भी राज्य में मंत्री पद को सुशोभित कर सकता है। गाजीपुर से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला एवं बिहार बंगाल सहित पूरे उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लखनऊ तक 341 किलोमीटर की अपनी सुगम यात्रा के लिए प्रसिद्धि पा चुका है। गाजीपुर के हैदरिया से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न केवल यात्री वाहनों के लिए बल्कि ट्रकों, मालवाहक वाहनों एवं किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। जनपद गाजीपुर में आपदा प्रबंधन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट राम भवन के नेतृत्व में पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से बाढ़ राहत एवं अन्य आपदा के नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल तथा मोबिलाइजेशन अभ्यास किया गया। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर गंगा तट पर अवस्थित है एवं इसका एक लंबा क्षेत्रफल गंगा के किनारे ही अवस्थित है। ऐसी स्थिति में अक्सर आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ एवं जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह अभ्यास किया जिससे आने वाले समय में बाढ़ राहत का कार्य सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके।
1: यूपी के जितने भी हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हर जगह तैयारी की समीक्षा के लिए 11 एनडीआरएफ की टीम बनारस से यहाँ पे आई थी गाजीपुर में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका मकसद यही था कि बारिश शुरू होने वाली है और जब भी बारिश होती है तो फ्लड सीजन शुरू हो जाता है, उससे पहले हमारी क्या तैयारी है बेसिकली उसकी समीक्षा के लिए एक मॉक एक्सरसाइज किया गया था। और इसका यह मकसद ये भी था कि लोगों में थोड़ा सा एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि हम फुली प्रिपेयर्ड हो जाएं किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए।
0: पिछले दिनों गाजीपुर जनपद में एक दुखद घटना भी हुई। प्रसिद्ध होटल व्यवसायी आलोक राय के पुत्र विनीत राय की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए तत्काल अपराधियों के खिलाफ इनाम घोषित कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी वैभव कृष्ण एवं पुलिस अधीक्षक ईरज राजा के नेतृत्व में लखनऊ एसटीएफ की टीम ने विनीत राय हत्याकांड में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। गाजीपुर के दो युवा पर्वतारोही खिलाड़ियों ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा लहराकर परचम फहराया है। गाजीपुर के नवली गांव निवासी पुनीत श्रीवास्तव, मर्दा क्षेत्र के सरी मुबारक निवासी अंकित चौबे ने लगभग 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद बीते 19 मई को सुबह 11 बजे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का सफर पूरा कर लिया एवं -17 डिग्री तापमान होने के बाद भी तिरंगा फहराकर एक मिसाल कायम की। जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के नेतृत्व में लोगों को दिन प्रतिदिन त्वरित न्याय सुलभ हो रहा है। 10 दिनों के अंदर ही 700 से ज्यादा राजस्व मामलों का निपटारा कर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने गाजीपुर के लिए एक मिसाल कायम की एवं विभिन्न राजस्व निस्तारण के क्रम में 140 हेक्टेयर जमीन भी खाली करा ली गई है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि अनुचित रूप से राजस्व कर्मियों का विरोध करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी बरसात से पूर्व जनपद के चिन्हित तालाबों, पोखरों आदि को खाली करा लिया जाएगा।
2: राजस्व कर्मचारियों को काम न करने देना, राजस्व कर्मचारी अधिकारियों के साथ गुंडागर्दी करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह का कृत्य अगर कहीं पे किया जाएगा तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और मेरा जनपद गाजीपुर की जनता को ये कहना है कि इस तरह का कृत्य में ना पड़े और अगर ये जानकारी आएगी तो फिर हम लोग सब कार्रवाई करेंगे, शासकीय कार्य में बाधा ना पड़े। यहाँ पे पीड़ित जनता भी है जिसका कार्य हम लोग डेली जनता दर्शन भी करके सुनवाई करते हैं और न्याय करने का प्रयास करते हैं।
0: पर्यावरण दिवस के दिन प्रारंभ होकर वृक्षारोपण अभियान को विशेष गति दी जा रही है जिसमें जनपद गाजीपुर में वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण स्थान बना सके। प्रख्यात पर्यावरणविद एवं गाजीपुर के मूल निवासी कृष्णानंद राय ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को गाजीपुर एवं वाराणसी में वृक्षारोपण कर पूरे भारत में पर्यावरण संबंधी बैठकों को वृक्ष के नीचे ही करने की सरकार से मांग की। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर के बैजलपुर गांव निवासी कृष्णानंद राय 40 वर्षों से साइकिल से यात्रा कर लाखों की संख्या में वृक्षारोपण कर लोगों के लिए पर्यावरण को जागरूक कर रहे हैं।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजुषा।

शंकर जय किशन की संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी की शब्द रचना स्वर था किशोर कुमार का, फिल्म थी कल आज और कल। अब लीजिए सुनिए आराधना फिल्म से एक बार फिर से किशोर कुमार को आनंद बख्शी के बोलों को सुर से सजाए है एसटी परमन ने।

0: साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का आगरा केंद्र, प्रस्तुत किया जा रहा है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।
1: क्या कहा?

श्रोताओ, आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना। स्वर थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म थी रामपुर का लक्ष्मण।

श्रोताओं, आशा भोसले और मोहम्मद रफी के गाय इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब समय है रुक संगीत के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं पूनम वशिष्ठ के गाय कुछ लोक गीत। आपके साथ संगीत कलाकार हैं। हारमोनियम पर प्रस्तुति है गोपाल सिंह परमार की। ढोलक पर साथ दे रहे हैं राधा मोहन शर्मा और बांसुरी वादक हैं ज्वाला प्रसाद।

0: श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पूनम वशिष्ठ के गाय कुछ लोक गीत। आपके साथ संगत कलाकार थे, हारमोनियम पर प्रस्तुति थी गोपाल सिंह परमार की, ढोलक पर साथ दिया राधा मोहन शर्मा ने और बांसुरी वादक थे ज्वाला प्रसाद। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

साध्या कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना। आशा भोसले के स्वर में गीतकार थे अनजान। फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे, लेकिन इस बार

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अंतराल से पहले हमने आपको जो गीत सुनवाया था वो था आंधी फिल्म से। स्वर थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के, बोल थे गुलजार के, धुन बनाई थी आर डी परमन ने। और अब लीजिए सुने फिल्म लव स्टोरी से लता।

श्रोताओं अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म है सिलसिला। स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। गीतकार है जावेद अख्तर, संगीतकार है शिव हरी।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

श्रोताओं, सच्ची शांति उस हृदय में जन्म लेती है जो प्रेम करता है, और गवाही वे होंठ देते हैं जो मेल मिलाप के शब्द बोलते हैं। ये उन आंखों में झलकती है जो दुनिया को करुणा और विवेक से देखती है, क्योंकि केवल सत्य और प्रेम की शक्ति ही सच्ची शक्ति है।

96.1 वेग मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं एलके पंडित का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन।

श्रोता भी सुन रहे थे कलाकार एलके पंडित द्वारा राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन, और कार्यक्रम था शास्त्रीय संकेत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस व्यक्तित्व के बारे में हम आपसे बात करेंगे वो केवल एक व्यक्तित्व नहीं, एक पहचान नहीं, बल्कि एक सफल अभिनेत्री के रूप में भी नहीं, बल्कि उनके जीवंत आत्मविश्वासी और हसमुख व्यक्तित्व के लिए सभी के बीच में जानी जाती हैं। जी हाँ, एक ऐसा मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा जिस पर अक्सर एक सहज और आत्मीय मुस्कान दिखाई देती है। उनकी मुस्कान लोगों को अपनापन और सकारात्मकता का एहसास कराती है और यही कारण है कि दर्शक उन्हें स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं।

उनकी आंखों और चेहरे के भाव बहुत अभिव्यंजक हैं। वे बिना अधिक संवाद बोले भी अपनी भावनाएं दर्शकों तक पहुंचा देती हैं। माँ, शिक्षिका, राजघराने की महिला या सशक्त महिला, जैसे भी किरदारों में उनके हाव भाव विशेष रूप से प्रभावशाली रहे हैं। उनकी बातचीत का अंदाज स्पष्ट, बेबाक और आत्मविश्वासी है। वे अपनी बात बिना झिझक के रखती हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व मजबूत और प्रभावशाली लगता है। और मैं आपको उनके बारे में क्या बताऊं, जितना बताया जाए उनके बारे में उतना कम है। उनके व्यक्तित्व में एक ममतामयी और स्नेहपूर्ण छवि दिखाई देती है। कई फिल्मों में उन्होंने माँ की भूमिका इतनी स्वाभाविकता से निभाई कि दर्शकों ने उन्हें वास्तविक जीवन में भी उसी रूप में देखना शुरू कर दिया। भारतीय परिधानों, विशेषकर साड़ियों और पारंपरिक परिधानों में उनकी उपस्थिति अत्यंत आकर्षक और गरिमा

तो श्रोता, ये था कार्यक्रम आज का कुछ बातें कुछ गीत, बस यहीं तक। मिलेंगे कल कुछ नए विषय पर, आपसे चर्चा करेंगे और कुछ नए आपको नगमे सुनवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए अपने इस कार्यक्रम से इजाजत अपनी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय को। नमस्कार। श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। श्रोता आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोहले जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
3: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
3: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800044559। आप इस नंबर पर

0: या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। कंचे चारों तरफ बिखरे।

0: हिरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहाड़ा सुना।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ

0: जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
1: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
1: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
1: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
1: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
1: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
1: हाँ हाँ बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
1: हाँ हाँ
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
1: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
2: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो?
1: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
1: क्या किसी को कोई शक नहीं?
2: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
2: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10

0: पैसे में।
1: क्या सोच रहे हो?
0: पैसे।
1: क्या, कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
0: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
3: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
4: मास्टर जी, नोटिस है।
1: लाओ।
2: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
0: ओए,
2: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
3: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
0: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
2: मास्टर ने कहा। वो छिझकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
2: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
0: ध्यान दूंगा।
2: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
5: बच्चों, एक एक करके आओ।
2: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
0: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
2: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
3: जॉर्ज को साथ लेकर चलू तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
2: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
0: जी मास्टर जी।
2: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया, फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा

0: कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
3: माँ,
4: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
4: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
4: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो।
4: आ, आ।
2: 1 2 3।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
4: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
4: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना।
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
4: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं।

0: सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
0: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
0: बहुत अच्छे लगते हैं। वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
2: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोता भी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीई आरडी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से ये गीत, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन ने। संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का और इस गीत में अपने बोल दिए हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

कार्यक्रम नए तराने में अगला नगमा अब आप सुनने जा रहे हैं फिल्म सलामे इश्क से, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला ने। कार्यक्रम में संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का और इस गीत को लिखा है समीर ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नई तरहने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं फिल्म सावरिया से शान की आवाज में।

आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अगला गीत जिसे आप सुनने जा रहे हैं फिल्म सलाम नमस्ते से गायत्री अय्यर और शान की आवाजों में।

और श्रोताओं, इस गाने के साथ ही कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इन दोनों ही बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले इलाकाई खबरें। कृपया हिंदी में समाचारों की

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल

0: 2026 will be held in Kolkata on the 21st of June, with Prime Minister Narendra Modi leading the celebrations. Addressing the curtain raiser press conference for the International Day of Yoga 2026 in New Delhi, the minister noted that the theme for International Day of Yoga 2026 is Yoga for Healthy Aging, which addresses one of the most significant challenges of the modern era. The United States and Iran have finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on his Truth Social platform last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. The peace agreement will be signed on the 19th of June in Switzerland. Mr. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. Benchmark domestic equity indices witnessed strong gains in the afternoon session today. Following the announcement of a peace deal between the United States and Iran, the Sensex climbed 922 points to 76,450, while the Nifty rose 287 points to 23,910 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। गौतम बुद्ध नगर के जेवर वाके नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से कॉमर्शियल परवाज खिदमात आज से शुरू हो गई। पहले मरहले में 1.2 करोड़ मुसाफिरों की कुव्वत वाला ये एयरपोर्ट मुस्तकबिल में 22.5 करोड़ मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। आखिरी मरहले में 5 रनवे होंगे जो इसे दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल करेंगे। मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और आसपास की रियासतों के लिए ये एविएशन गेट बनेगा। इंडिगो मरहलेवार तरीके से लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसके साथ दीगर उड़ान कंपनियां भी अपनी खिदमात फराहम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले का इफ्तिताह 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की बुनियाद भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को रखी थी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से ज्यादा के 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने रियासत के न्यूट्रिशन मिशन के दूसरे मरहले का भी आगाज किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश एक बीमार रियासत से मुल्क की तरक्की के इंजन में तब्दील हो गया है।
2: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
1: वज़ीर-ए-आला ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ डिवीजनों में महकमा तामीरात आम्मा के काम का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका ओहदेदारान को हिदायत दी कि तमाम तामीराती कामों में तेजी लाई जाए और उन्हें मेयार के साथ वक्त पर मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आला ने कल शाम गोरखपुर मंदिर के मीटिंग हॉल में महाराणा प्रताप एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को जदीद मजामीन में महारत से आरास्ता करने और किसानों को खुद इन्हिसार बनाने के लिए काम करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप के 15 फुट ऊंचे मुजस्मे की नकाब कुशाई की। महाराणा प्रताप की बहादुरी, कुर्बानी और जद्दोजहद को याद करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुजश्ता 12 बरसों में हिंदुस्तान की आलमी शिनाख्त बदल गई है।
3: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री।

0: इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरसों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत नुमाया तरक्की की है। इस सिलसिले की मुनासबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ तरक्की और अवामी बहबूद के 12 साल के उनवान से एक खसूसी सीरीज नशर कर रहा है। आज हम 2047 तक भारत के एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के हदफ को हासिल करने के लिए जदीद ढांचे की तामीर के लिए हुकूमत की कोशिशों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। अब समय है हमारी बहनों के अपने कार्यक्रम घर संसार का।

कार्यक्रम घर संसार सुनने वाली हमारी सभी बहनों को वंदना तुली का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हमने अक्सर सुना है कि एक वृक्ष जितना पुराना होता है उसकी जड़ें उतनी ही मजबूत होती हैं। घर के बुजुर्ग भी उसी वृक्ष के समान होते हैं। घर की चौखट पर बैठे दादा दादी या नाना नानी केवल परिवार के सदस्य ही नहीं होते, बल्कि वे अनुभवों की वो जीवित विरासत होते हैं जिनसे जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है। और जिस घर में बुजुर्गों का साया होता है वहां अनुभव, संस्कार और आशीर्वाद का खजाना भी होता है। जीवन की लंबी यात्रा में उन्होंने संघर्षों, सफलताओं और असफलताओं से जो सीख अर्जित की है वे केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है। लेकिन बहनों, दुख की बात है कि आज कई बुजुर्ग उपेक्षा, तिरस्कार और दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। इसी गंभीर विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 15 जून यानी आज ही के दिन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बहनों, बुजुर्ग हमारे समाज की जीवित पुस्तकें हैं। उनके अनुभव हमें जीवन के उतार चढ़ाव से निपटना सिखाते हैं। चाहे परिवार को एकजुट रखने की बात हो, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की कला हो या फिर जीवन मूल्यों की सीख, इन सभी में बुजुर्गों का योगदान अतुलनीय है। लेकिन बहनों, बदलती जीवन शैली, व्यस्त दिनचर्या और बढ़ती पीढ़ीगत दूरी के कारण कई बार बुजुर्ग स्वयं को अकेला और उपेक्षित महसूस करते हैं।

0: मानो ये दिवस हमें ये सोचने का अवसर देता है कि क्या हम अपने बुजुर्गों को वो सम्मान, सुरक्षा और स्नेह दे रहे हैं जिसके कि वे हकदार हैं। ओल्ड एज होम में बढ़ती बुजुर्गों की संख्या बहुत ही शोचनीय है। मानो यदि हम उनके अनुभवों को सुने, उनके साथ समय बिताएं और उन्हें निर्णयों में शामिल करें, तो न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी जीवन की अनमोल सीख प्राप्त कर सकेंगी। आइए इस दिवस पर हम ये संकल्प लें कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे और उनके अनुभवों को समाज की अमूल्य धरोहर के रूप में सहेजेंगे। याद रखिए, आज जिन हाथों को सहारे की जरूरत है, कभी उन्हीं हाथों ने हमें चलना सिखाया था। इसी विषय पर है हमारी आज की वार्ता, परिवार के शक्तिपुंज हमारे बुजुर्ग, और वार्ताकार हैं डॉक्टर सुमन शर्मा। आइए सुनते हैं।
1: परिवार एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक संस्था होने के कारण समाज के जीवन मूल्यों, संस्कारों, परंपराओं, रूढ़ियों और प्रथाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का दायित्व परिवारों का है। एक परिवार में सामान्यतः तीन या चार पीढ़ियां एक साथ निवास करती हैं। सबसे पुरानी पीढ़ी के सदस्य हमारे बुजुर्ग कहलाते हैं। आयु और अनुभव के दृष्टिकोण से ये पीढ़ी परिवार में सबसे अधिक श्रेष्ठ होती है। परिवार में इस पीढ़ी की उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है। आज हम अपने परिवार में बुजुर्गों की उपस्थिति और उसके कारण परिवार को होने वाले लाभों को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक परिवार अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देना चाहता है, ताकि बच्चे भविष्य में अच्छे नागरिक बन सके। यद्यपि विद्यालयों में बच्चों को विषय रूप में संस्कार सिखाए जाते हैं, किंतु संस्कार कोई विषय नहीं है, बल्कि हमारा कार्यात्मक व्यवहार है, जिसे व्यवहार में आत्मसात करना पड़ता है। घर के बुजुर्ग अपने परिवार के बच्चों को अपने संस्कारों में शनैः शनैः दीक्षित करते रहते हैं। बुजुर्गों का सानिध्य पाने वाले बच्चे अच्छी प्रकार से अपने घर परिवार और धर्म जाति से जुड़े संस्कारों को भली भांति सीख लेते हैं। संस्कारित बच्चे किसी परिवार और समाज की पूंजी होते हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं अच्छे, कर्मनिष्ठ और संस्कारित लोगों के कारण न सिर्फ आगे बढ़ती हैं, बल्कि पुष्ट भी होती हैं। भारतीय समाज का जो वैशिष्ट्य हमें आज दिखलाई देता है, उसका संपूर्ण श्रेय परिवार के बुजुर्गों को जाता है। संस्कारित मूल्यों के प्रति उनकी आस्था और उसे अपने परिवारी जनों को हस्तांतरित करने की उनकी तन्मयता के कारण ही आज तक हमारे संस्कारों की रक्षा संभव हो पाई है। चूंकि हमारे बुजुर्ग परिवार के सर्वाधिक उम्रदराज सदस्य होते हैं, इसलिए उनके पास सबसे अधिक अनुभव होता है। परिवार में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब एक सर्वसम्मत निर्णय लेने में अत्यधिक कठिनाई का अनुभव होता है। ऐसे में हमारे परिवार के बुजुर्ग अपने अनुभव के आधार पर ऐसी समस्याओं को भी सुलझा देते हैं। घर के बुजुर्ग हमें जन व्यवहार, लोकाचार तथा व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा भी देते हैं, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों से हमारे बुजुर्ग पहले से ही दो चार हो चुके होते हैं, इसलिए वे हमें बड़ी आसानी से जन व्यवहार और लोकाचार की सीख दे देते हैं। लोकाचारों की निपुणता जीवन में बहुत अधिक होती है और इसकी सीख हमें केवल अपने बुजुर्गों से प्राप्त होती है। आज के आधुनिक जीवन में रहन सहन की ऊंची सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। जीवन की इस भागदौड़ में जो लोग पीछे छूट जाते हैं, वे तनावग्रस्त और अवसादग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में परिवार के बुजुर्ग अपने परिवार के ऐसे लोगों को अपना स्नेह और मार्गदर्शन देकर अवसाद की स्थिति से बाहर निकालते हैं। आज परिवार के बुजुर्ग अपने परिवारी जनों को इस प्रकार उत्साहित और ऊर्जित करते रहते हैं कि बच्चे अपने आप को तनाव से मुक्त रख सके। बुजुर्ग अपने बालकों को प्रतिपल उत्साहित करते रहते हैं, ताकि बच्चे परिश्रम और उसके कारण प्राप्त होने

वाली सफलता का महत्व समझ सकें। परिवार के अंदर विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाले लोग होते हैं। विचारों की विभिन्नता कभी कभी इस स्तर पर पहुंच जाती है कि परिवार के लोग आपस में एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, भावनात्मक बंधन ढीले पड़ने लगते हैं और परिवारी जन एक घर में रहकर भी एक दूसरे के लिए पराये हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे बुजुर्ग ही अपनी बुद्धिमत्ता से परिवार के सदस्यों के मध्य पनप रही भाव शून्यता और वैमनस्यता को दूर करते हैं। बुजुर्ग परिवार की एकता और शक्ति के संरक्षक होते हैं। बुजुर्ग हमारे परिवारों में प्रेम सूत्र का कार्य करते हैं, जिसमें अन्य सदस्यगण मोती रूप में बिंध कर परिवार रूपी हार को भव्यता प्रदान करते हैं। बुजुर्गों के प्रयास से परिवार में सौहार्द बढ़ता है, फलतः परिवार में शांति एवं सुख की वृद्धि होती है। घर के बुजुर्ग परिवार में आत्मनिर्भरता एवं कौशल विकास की वृद्धि हेतु भी प्रयासरत रहते हैं। अपने विवेक और मार्गदर्शन से वे घर के युवा सदस्यों की रुचियों के अनुरूप उन्हें विभिन्न कार्यों को करने का दायित्व सौंपते हैं, ताकि युवा सदस्य आवश्यक कौशल और अनुभवों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। युवाओं को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करके वे परिवार की आर्थिक मजबूती बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। आजकल के बुजुर्ग सामाजिक बुराइयों के प्रति भी अत्यधिक सतर्क हैं। वे अपनी पारखी दृष्टि से पारिवारिक सदस्यों के व्यवहार पर निगरानी रखते हैं और सही कारण का पता लगाकर व्यवहार में हुए परिवर्तन को सही करने का प्रयास करते हैं। बच्चों में अपराधीकरण की प्रवृत्ति को रोकने में बुजुर्ग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आजकल समाज में नशाखोरी, चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां तेजी से पनप रही हैं। इन बुराइयों के चलते सामाजिक तानाबाना बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हमारे परिवार के बुजुर्ग अपने परिवार के सदस्यों को इन बुराइयों के खिलाफ सतर्क करके और उनके समाज पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव की सही जानकारी देकर इन समस्याओं को रोकने में अपनी प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहे हैं। समाज में ऐसी भी कई प्रथाएं हैं जो बहुत समय से चली आ रही हैं, जिनके कारण समाज के गरीब लोगों पर बहुत अधिक आर्थिक दबाव पड़ता है, जैसे विवाह में दहेज देना, महंगे सामाजिक आयोजन करना, मृत्यु भोज इत्यादि। हमारे बुजुर्गों ने इन समस्याओं पर विचार करके इनके बहिष्कार की जमीन तैयार की है। आज के युग में कई गांवों में इस प्रकार के आयोजन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन सब बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने की शुरुआत हमारे बुजुर्गों ने की थी, जिसके कारण आज हमारे युवा इन प्रथाओं को अनावश्यक समझने लगे हैं और इन प्रथाओं की समाप्ति की ओर दृढ़ संकल्पित होकर अग्रसर होने लगे हैं। बताई गई बुराइयां हमारे समाज में कैंसर की तरह फैली हुई थी, किंतु हमारे बुजुर्गों के सत प्रयासों द्वारा इन बुराइयों की भयावहता समझने में नई पीढ़ी को बहुत बड़ा योगदान प्राप्त हुआ है। हमारे परिवार के अनुभवी बुजुर्गों ने हमें रीति, नीति और राजनीति की व्यवहारिक समझ विकसित करने में हमारी मदद की है। हमारे बुजुर्गों ने हमें जो रीति और नीति का उचित भेद बताया है, उससे हमें अपने सामाजिक संस्कारों, व्यवहारों, संस्थाओं, परंपराओं इत्यादि को समझने में सहायता मिली है। आज के युग में जब शासन का कार्य जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों द्वारा संपन्न किया जाता है, तब राजनीति को समझना भी परमावश्यक हो गया है। ऐसे में हमारे बुजुर्ग हमें इस दिशा में भी अपने अनुभवों से समृद्ध कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों द्वारा हमें रीति, नीति और राजनीति से संबंधित जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो हमारे सामाजिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। वृद्धावस्था जीवन की सबसे परिपक्व अवस्था होती है। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति जीवन के सभी अनुभव प्राप्त कर चुका होता है। ऐसे में वृद्ध व्यक्ति का आचरण बहुत अधिक संयमित एवं मर्यादित हो चुका होता है। बुजुर्ग व्यक्तियों के संयमित एवं मर्यादित आचरण का प्रभाव स्वयमेव घर में युवा पीढ़ी पर पड़ता ही है। इसीलिए बुजुर्ग सदैव घर में छोटे बच्चों और युवाओं को बहुत प्रिय होते हैं। बुजुर्ग अपने आचरण से उन्हें प्रभावित करते हैं। समस्या समाधान की उनकी अनोखी शैली बालकों और युवाओं को बहुत पसंद आती है
और वे सहज ही बच्चों के रोल मॉडल बन जाते हैं।

0: प्रातः काल जल्दी उठ जाना, मधुर बोलना, व्यवहारगत शिष्टता, धैर्य, न्यायप्रियता, सामाजिक जीवन में सहभागिता, आहार विहार का संयमन और न जाने कितने और ऐसे गुण जिनका यहाँ उल्लेख संभव नहीं, बच्चे और युवा उनकी सहज संगत के कारण सीख जाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति दो पीढ़ियों के मध्य उपस्थित वैचारिक मतभेदों को भी सहज भांप लेते हैं और ऐसी परिस्थितियों का भी सुलभ समाधान खोज लेते हैं। परिवार के बुजुर्ग अपने नव विवाहित बच्चों को अथवा नव संतानवान बच्चों को नई पीढ़ी के लालन पालन हेतु समुचित तकनीक सिखाते हैं। बालकों के लालन पालन पालन पोषण एवं उनकी शारीरिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक व्यक्ति को उसी प्रकार प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जिस प्रकार एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अपने बच्चों में श्रेष्ठ पितृत्व एवं मातृत्व के गुणों का विकास बुजुर्गों द्वारा किया जाता है। ये गुण हर व्यक्ति अपने बुजुर्गों द्वारा ही सीखता है, क्योंकि ये पारिवारिक गुण किसी विद्यालय में नहीं सिखाए जाते। प्रत्येक व्यक्ति इन गुणों को अपने बुजुर्गों को देखकर ही सीखता है। संक्षेप में कहा जाए तो बुजुर्ग हमारे परिवार के पावर हाउस हैं। जिस प्रकार पावर हाउस से संचरित वैद्युत बल से हमारे घरों के विभिन्न विद्युत उपकरण संचालित होते हैं और हमारे कार्य शीघ्रता से संपन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे बुजुर्ग हमारे परिवार के शक्तिपुंज हैं। इनकी वैचारिक एवं अनुभवों की शक्ति हमारे परिवारों में संस्कार, धर्मवृत्ति, आचरणिक शुद्धता, संयमित व्यवहार, मर्यादित आचरण जैसे सामाजिक गुणों का विकास करती है। हम अपने परिवारों में अपने बुजुर्गों की उपस्थिति और उनकी उपादेयता पर गौरव का अनुभव करते हैं। हमारे बुजुर्गों के संरक्षण एवं निर्देशन के कारण हम हमारे सामाजिक मूल्यों एवं पारिवारिक आदर्शों को अपनी आगामी पीढ़ी तक सफलतापूर्वक पहुंचा पाए हैं। सचमुच ये कहना कोई अतिशयोक्ति न होगा कि बुजुर्ग हमारे परिवार के शक्तिपुंज हैं।
1: आप बहनों, अभी आपने सुनी डॉक्टर सुमन शर्मा की वार्ता, परिवार के शक्तिपुंज हमारे बुजुर्ग। कितना ठीक ही तो कहा है कि बुजुर्गों का स्नेह और उनका अनुभव हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए इसी भावना को व्यक्त करते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा ये मधुर गीत।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: मैनो खूबसूरत और स्वस्थ बाल हर किसी की चाहत होती है, लेकिन बदलती जीवन शैली, बढ़ता प्रदूषण और तनाव हमारे बालों की चमक और मजबूती को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में बालों के सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि गहरे पोषण की भी जरूरत होती है। तो आइए आज फैशन एंड ब्यूटी सेगमेंट में बात करते हैं कैसे हेयर केयर ट्रीटमेंट की जो आपके बालों को दे सकता है नया जीवन और भरपूर पोषण, और वो है हेयर स्पा। हेयर स्पा एक ऐसी हेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो बालों और स्कैल्प को गहराई से पोषण प्रदान करती है। इसमें बालों की सफाई, मसाज, स्टीम और पोषक तत्वों से भरपूर हेयर मास्क का उपयोग किया जाता है। हेयर स्पा के कई फायदे हैं। ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, रूखे और बेजान बालों में नई जान डालता है और बालों की प्राकृतिक चमक को वापस लाने में मदद करता है। नियमित हेयर स्पा से दो मुहे बालों की समस्या भी कम हो सकती है और स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। मैनो यदि आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, बहुत अधिक ड्राई हैं या प्रदूषण के कारण उनकी चमक कम हो गई है, तो महीने में एक या दो बार स्पा करवाना लाभदायक हो सकता है। हालांकि अपने बालों की प्रकृति के अनुसार सही प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट का चयन करना भी जरूरी है। तो मैनो याद रखें, सुंदर बाल केवल आपकी खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी निखारते हैं। इसलिए अपने बालों को समय समय पर वो देखभाल और पोषण जरूर दें जिसके कि वे हकदार हैं। तो बहनों, स्वस्थ, मजबूत और चमकदार बालों के लिए हेयर स्पा को अपनी ब्यूटी रूटीन का हिस्सा बनाइए और अपने बालों को दीजिए भरपूर पोषण। उम्मीद है बहनों, आज की जानकारी आपके बालों की देखभाल को और बेहतर बनाने में मदद करेगी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: मैनो हवा, जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। यही हवा जब ऊर्जा का रूप लेती है तो न केवल हमारे घरों को रोशन करती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रकृति का ये अनमोल उपहार आज स्वच्छ और हरित ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। हर वर्ष 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को पवन ऊर्जा के महत्व और इसके पर्यावरणीय लाभों के प्रति जागरूक करना।

करना है। मैंने आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब पवन ऊर्जा एक स्वच्छ, नवीकरणीय और टिकाऊ विकल्प बनकर उभर रही है। ये ऊर्जा ना तो वायु को प्रदूषित करती है और न ही प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करती है। और बहनों, काम की बात यह है कि भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों जैसे गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से न केवल स्वच्छ बिजली का उत्पादन हो रहा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। और भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पवन ऊर्जा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। पर बहनों, जितना अधिक हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाएंगे, उतना ही हमारा भविष्य सुरक्षित और हरित बनेगा। मेरी माटी मेरा देश केवल अपनी धरती से प्रेम का संदेश नहीं है, बल्कि उस धरती को सुरक्षित और समृद्ध रखने का संकल्प भी है। हमारी मिट्टी, हमारे खेत, हमारा पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब हम विकास के साथ साथ प्रकृति का भी सम्मान करेंगे। और इसी सोच को आगे बढ़ाती है पवन ऊर्जा, जो स्वच्छ और हरित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और बहनों, कहते हैं जब इरादे मजबूत हो और दिशा सही हो, तो बदलाव की नई हवा पूरे समाज को आगे बढ़ा सकती है। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं ये मधुर गीत।

और बहनों, अब समय है रेसिपी टाइम का, और आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी। तो आइए आज बनाते हैं मखाना ड्राई फ्रूट लड्डू। इसके लिए आपको चाहिए 2 कप मखाना, आधा कप बादाम, आधा कप काजू और 8 से 10 खजूर बीज निकाले हुए, 2 बड़े चम्मच घी और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। तो सबसे पहले मखानों को घी में हल्का भून लें, फिर बादाम और काजू को भी भून लें। अब सभी चीज़ों को ठंडा करके मिक्सर में दरदरा पीस लें और इसमें खजूर और इलायची पाउडर मिलाकर मिश्रण तैयार करें। हाथों में थोड़ा घी लगाकर छोटे छोटे लड्डू बना लें। बहनों, ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं क्योंकि मखाना कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जबकि ड्राई फ्रूट शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। तो बहनों, इन्हें घर पर ज़रूर बनाकर देखें और अपने परिवार के साथ स्वाद का आनंद लें। और अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। अपनी रेडियो सखी वंदना तुली को अब आज्ञा दीजिए, फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।

बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता, आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कलाकार कविता शर्मा द्वारा गाई हुई कुछ चयनित गजलें। प्रस्तुत है पहली गजल, जिसके बोल हैं, अगर तलाश करूं।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम की ये अगली गजल कविता शर्मा की आवाज में, जिसके बोल हैं मेरी दास्तां हसरत।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आपने सुनी कलाकार कविता शर्मा द्वारा गाई हुई कुछ चयनित गजलें। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज और दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर के समाचार। इन दोनों ही बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: April under the old series. The release marks the first major revision of India's wholesale inflation series in over a decade, with the base year updated from 2012 to 2023. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that the rise in inflation last month was primarily driven by higher prices of mineral oils. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Avignon this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के

0: साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र का प्रसारण मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत पहली प्रस्तुति के रूप में आप सुनेंगे कलाकार अब्दुल हाय खान द्वारा राग पीलू में गायन।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा आप सुनेंगे राग सारंग में गिटार वादन।

श्रोता भी सुन रहे थे पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा राग सारंग में गिटार वादन और कार्यक्रम था उपशास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:45 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मॉडर्न गर्ल से ये गीत, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने। इस गीत में संगीत निर्देशन है रवि का और इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने।

कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अगला नगमा जो आप सुनेंगे वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म प्यासे पंछी से। अपनी आवाजें दी हैं सुमन कल्याणपुर और हेमंत कुमार ने, संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का और इस गीत को लिखा है कामर जलालाबादी ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं पुराने गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें से, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं समन कल्याणपुर और मुकेश ने। संगीत निर्देशन है एसजी वर्मन का और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

श्रोताओ, हेमंत कुमार के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। श्रोता अब सुनेंगे लोकप्रिय फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म हेलो ब्रदर से ये नगमा, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं उदित नारायण और अलका याग्निक ने। संगीत निर्देशन है साजिद वाजिद का और इस गीत को लिखा है फैज अनवर ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आप सुनेंगे फिल्म रिफ्यूजी से, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं सोनू निगम और अलका याग्निक ने। इस गाने में संगीत निर्देशन है अनु मलिक का और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं इन मीठे मीठे गीतों को कार्यक्रम गीत गुंजन में आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता सुनेंगे फिल्म यस बॉस से, जिसपे अपनी आवाजें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इस गीत में संगीत निर्देशन है जतिन ललित का और इस गीत को लिखा है जब

कार्यक्रम गीत गुंजन में इस मीठे से गीत के बाद श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है ये अगला गीत फिल्म पापा कहते हैं से, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं कुमार सानू ने और उनका साथ दिया है अलका याग्निक ने। संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। कार्यक्रम का अंतिम नगमा श्रोताओं अब आप सुनेंगे फिल्म रहना है तेरे दिल से। इस गीत में अपनी आवाज दी है केके ने और इस गीत में संगीत निर्देशन है हैरिस जयराज का। इस गीत को लिखा है वाशु भगनानी ने।

और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। और इसके साथ ही इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। शाम के 5 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे।

0: निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो की मौसम स्थिति के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। प्रधानमंत्री की स्टामर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico held delegation-level talks in Bratislava today, addressing a
4: मीडियम वेव 196 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा के

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय

इंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। आइए लेते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी ग्रीन जॉब्स के विषय में। इतिहास के पन्नों से सेगमेंट में आज लीजिएगा जानकारी गोवा क्रांति के विषय में। सेगमेंट नई पहल में लावारिस संपत्ति पोर्टल के विषय में लीजिएगा जानकारी। साथ ही सुनिएगा वार्ता बदलते पारिवारिक ढांचे में बुजुर्गों की चुनौतियां। वार्ताकार होंगे अनम। सेगमेंट चलते चलते में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अपनाएं, इस विषय में लीजिएगा जानकारी। हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम्य लोक शाम 6:00, जिसमें आज चर्चा होगी गांव के विकास में पंचायतों की भूमिका के विषय में। साथ ही होगी वार्ता जिसका विषय होगा खरीफ फसलों की तैयारी। वार्ताकार होंगे जगवीर सिंह। साथ ही आनंद लीजिएगा लोकगीतों का, जानिएगा मंडी भाव और मौसम का हाल, और जानकारी लीजिएगा नई किस्मों के विषय में। हमारे श्रमिक साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल शाम 6:30 पर, जिसमें चर्चा होगी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के विषय में। सेगमेंट होंगे सेहतनामा, जानिएगा घरेलू नुस्खे, होगा आज का प्रश्न। सेगमेंट होगा ज्ञान सागर और होगी आज की पाती। साथ ही आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का।

श्रोताओं, शाम 7:10 पर समय रहेगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता टूटते परिवार बिखरता व्यक्तित्व। वार्ताकार होंगी डॉक्टर सुनीता सक्सेना। श्रोताओं, शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं रात्रि 8 बजे कार्यक्रम शामी गजल में, जिसमें आपको सुनवाई जाएंगी फिल्मों से चंद गजलें। इसके अलावा फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। और श्रोताओं, इसके अलावा भी फिल्म संगीत आप सुनेंगे अपने मनपसंद कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। संपादक विशेषता शर्मा, प्रस्तुतकर्ता होंगे अनिंद्र सिंह। सुनना मत भूलिएगा रात्रि 10 बजे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। और शास्त्रीय संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं रात्रि 10:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित मणि प्रसाद से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग कौशिक ध्वनि। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम सूर्य संध्या का, तो आइए सुनते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सूर्य संध्या। कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना केदारनाथ फिल्म से अमित त्रिवेदी के स्वर में।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, चार धाम फिल्म से ये भक्त रचना आपने सुनी हरिहरन के स्वर में। उदय शंकर वाणी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था सुरेंद्र कोहली ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जावेद अख्तर के संगीत निर्देशन में जोधा अकबर फिल्म का गीत ए आर रहमान के स्वर में।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में जोधा अकबर फिल्म से ये भक्ति रचना आपने सुनी A.R. रहमान के स्वर में। जावेद अख्तर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था A.R. रहमान ने। श्रोताओं, इन भक्ति रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का युवाणी कार्यक्रम में और आप सुन रहे हैं आपकी अपनी होस्ट अपेक्षा शाक्या को। दोस्तों, आज के अंक में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो आजकल हर जगह ट्रेंड कर रहा है, ग्रीन जॉब्स। अक्सर लोगों को लगता है कि ग्रीन जॉब्स का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे लगाना या फार्मिंग करना है, बट ऑनेस्टली ये सोच थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी है। आज के समय में ग्रीन जॉब्स की डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड और डायनेमिक हो चुकी है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हर वो नौकरी जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है और रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ सुनिश्चित करती है, वो ग्रीन जॉब है। चाहे वो टेक सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल हो या कॉरपोरेट वर्ल्ड। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज अचानक इसका इतना हाइप क्यों है। द रीज़न इज़ क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और अनप्रडिक्टेबल वेदर की वजह से सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो चुकी है। अब हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसी क्राइसिस को देखते हुए दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और ग्लोबल कंपनीज की प्रायोरिटीज़ पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब कंपनीज़ को सिर्फ प्रॉफिट कमाना काफ़ी नहीं है, उन्हें इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल होना ही पड़ेगा। यही वजह है कि मार्केट में ग्रीन स्किल्स की डिमांड अचानक स्काई रॉकेट कर गई है। दोस्तों, इसे हम फ्यूचर इकोनॉमी भी कह सकते हैं। आने वाले समय में सारा इन्वेस्टमेंट सोलर, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जैसे सेक्टर्स में जाने वाला है, और जहां इन्वेस्टमेंट जाएगा वहीं सबसे ज़्यादा न्यू जॉब्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। दोस्तों, इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि ग्रीन जॉब्स का मतलब सिर्फ साइंटिफिक या रिसर्च की जॉब्स नहीं है। इस पूरी शिफ्ट में हर बैकग्राउंड के यूथ के लिए स्कोप है। उदाहरण के लिए, कॉर्पोरेट जगत में अब ESG यानी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस एक्सपर्ट्स की भारी डिमांड है, जो कंपनियों की ग्रीन पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोडिंग में हैं तो आप ऐसी कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं जो एनर्जी सेविंग पर काम करती है। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर मैनेजमेंट और ऑपरेशन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। यहाँ तक कि आर्किटेक्चर में भी अब ग्रीन बिल्डिंग्स डिज़ाइन करने वाले प्रोफेशनल्स की भारी मांग है। दोस्तों, यदि आप लॉ बैकग्राउंड से हैं तो एनवायरनमेंट लॉयर बन सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग में हैं तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की ग्रीन मार्केटिंग संभाल सकते हैं। यानी आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को ग्रीन स्किल्स में अपग्रेड करके इस रेस में आगे निकल सकते हैं। सो द बॉटम लाइन इज, ग्रीन जॉब्स सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं, बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आज के यूथ को एक ऐसा चांस देती है जहां वह अच्छी अर्निंग के साथ हमारी धरती के लिए भी कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। आने वाला फ्यूचर उन्हीं का है जो इस बदलाव को समझेंगे और इसके लिए रेडी रहेंगे। सो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए और इसी ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए। और अब वक्त है आज के सबसे विशेष और इम्पोर्टेंट खंड का। दोस्तों, आज 15 जून है, जिसे पूरे

0: विश्व में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस की शुरुआत इसलिए की गई ताकि दुनिया भर में बुजुर्गों के साथ होने वाला किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, उपेक्षा या मानसिक और शारीरिक हिंसा के खिलाफ समाज को जागरूक किया जा सके। आइए सुनते हैं अनम को, जो बदलते पारिवारिक ढांचे में बुजुर्गों की चुनौतियों पर रोशनी डालेंगे।
1: दोस्तों, हम सब कहते हैं कि हमारा देश बदल रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं। आज हमारे पास बड़े घर हैं, गाड़ियां हैं, अच्छा बैंक बैलेंस भी है। लेकिन कभी ठंडे दिमाग से सोचिए कि इस तरक्की की दौड़ में हमने खोया क्या है। हमने खोया है अपना संयुक्त परिवार, जहां दादा दादी, चाचा चाची सब साथ रहते थे। आज हम सिमटकर न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटे से परिवार में आ गए हैं, बस पति पत्नी और बच्चे। ये बदलाव सिर्फ घर का नहीं है, हमारी सोच का भी है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा नुकसान हमारे घर के बुजुर्गों को उठाना पड़ रहा है। जिस उम्र में उन्हें सबसे ज्यादा अपने परिवार की जरूरत होती है, उसी उम्र में वो अकेले छोड़ दिए जाते हैं। बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या आज कोई बीमारी नहीं, बल्कि उनका अकेलापन है। बच्चे नौकरी या पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों या विदेशों में चले गए हैं। जो बच्चे साथ भी रहते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता। सुबह ऑफिस की भागदौड़, शाम को थकान, और जो थोड़ा बहुत वक्त बचता भी है, वो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप में गुजर जाता है। इस बूढ़े माँ बाप या माँ के पास जाकर बैठने वाला कोई नहीं, जो दिन भर सिर्फ इस आस में दरवाजे की आस तकते रहते हैं कि कोई आएगा और पूछेगा कि बापूजी आप कैसे हैं, आज का दिन कैसा बीता। यह अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जाता है। अपने बच्चों के बीच बेगाना और होने का एहसास एक नया और बहुत कड़वा सच है। आजकल कई घरों में बुजुर्ग साथ तो रहते हैं, लेकिन उन्हें एक कोने में पड़े हुए देखते हैं, किसी पुराने फर्नीचर की तरह। जब वे अपनी कोई राय देते हैं, तो आज की पीढ़ी बहुत ज्यादा आसानी से कह देती है कि मम्मी रहने दो, आप आज के जमाने की क्या पता आपको। ये छोटी सी बात उनके आत्मसम्मान को अंदर तक झंझोड़ देती है। उन्हें लगता है कि इस घर को बनाने में उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, आज उसी घर में उनकी कोई अहमियत न रही। हमारे देश में मिडिल क्लास माता पिता की सबसे बड़ी खूबी ये कहिए कि एक ये कमजोरी है, ये होती है कि वो अपने पाई पाई बच्चे की पढ़ाई, उनकी शादियों और उनके करियर को संवारने में लगा देते हैं। वे अपने बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं बचाते हैं। अब नतीजा ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद वे पूरी तरह बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। जब बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं, तो एक एक छोटी जरूरत के लिए, जैसे नए कपड़े सिलवाने के लिए, किसी रिश्तेदार की शादी में शगुन देने के लिए, उन्हें बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। ये एक लाचारी है, एक स्वाभिमान बुजुर्ग के लिए मौत से बढ़कर है। उम्र बढ़ेगी तो शरीर कमजोर होगा ही, घुटनों का दर्द, बीपी, शुगर, मोतियाबिंद, ये सब बुढ़ापे के साथी हैं। आज के छोटे परिवारों में जब पति पत्नी दोनों कामकाजी होते हैं, तो बुजुर्गों को समय पर दवा देने वाला या उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं होता। कई बार तो वे अपनी बीमारी सिर्फ इसलिए छिपा देते हैं कि बच्चों का फालतू पैसा खर्च न हो जाए या उनके ऑफिस से वक्त खराब न हो जाए। आज की दुनिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। बैंक का काम हो, बिजली का बिल भरना हो या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी हो, सब मोबाइल से होता है। हमारे कई बुजुर्ग इस तकनीक को नहीं समझते, इस वजह से वे खुद को बहुत सहाय और दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं। वे चाहकर भी इस तेज भागती दुनिया के साथ कदम से कदम नहीं चला पाते। अब ये नौबत क्यों आई, हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम स्वार्थी हो गए हैं। आज की पीढ़ी त्याग का मतलब भूल चुकी है। हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम इस काबिल बनाने के लिए हमारे माता पिता ने अपनी पूरी जवानी और अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी। अब धैर्य की कमी हम में बहुत ज्यादा हो गई है। बुजुर्ग कभी कभी एक ही बात को बार बार दोहरा देते हैं या उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, ये उम्र का तकाजा है, लेकिन हमारे पास उन्हें समझने का धैर्य नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, भाषण देने से या सिर्फ दुख जताने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव हमें अपने घर से शुरू करना होगा। थोड़ा सा वक्त उधार दीजिए। उन्हें आपके पैसों की जरूरत नहीं है या महंगे गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, उन्हें उनका वक्त चाहिए। ऑफिस से घर आकर सिर्फ 10 मिनट उनके पास बैठिए, उनके पैर दबाइए, उनसे पुरानी बातें सुनिए,

0: आप देखेंगे कि उनके चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान आ जाती है। उन्हें महसूस कराइए कि वे जरूरी हैं। घर का कोई भी छोटा बड़ा काम हो, उनकी सलाह जरूर लीजिए। भले ही आप आखिरी फैसला अपने मुताबिक करें, लेकिन उनका मशवरा लेने से उन्हें लगेगा कि वे आज भी घर के मुखिया हैं। बच्चों को संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को दादा दादी नाना नानी के साथ वक्त बिताने दीजिए। जो संस्कार और कहानियाँ वे बुजुर्गों से सीखेंगे, वो उन्हें किसी महंगे स्कूल या इंटरनेट पर नहीं मिल सकती। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं या कोई अपराध नहीं है। ये जिंदगी की एक खूबसूरत ढलती हुई शाम है, और शाम जितनी शांत और सुकून भरी हो उतना ही अच्छा है। याद रखिए, जो पेड़ हमें छाव देता है, जब वो बूढ़ा हो जाए तो उसकी लकड़ियां नहीं काटते, बल्कि उसकी जड़ों को और मजबूत करते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारे परिवार की वही जड़ें हैं। आज हम उनके साथ जैसा बर्ताव करेंगे, कल हमारी औलाद हमसे वैसा ही व्यवहार करेगी। आइए हम सब अपने दिल पर हाथ रखकर ये वादा करें कि हम अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्हें वो इज्जत प्यार देंगे जिसके वे हकदार हैं। आप सबने मुझे इतनी शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अ बिग थैंक्स टू अनम, जिन्होंने बुजुर्गों की इस स्थिति और गंभीर चुनौतियों को इतनी एम्पथी के साथ हमारे श्रोताओं के सामने रखा। वाकई बदलती दुनिया में हमारे बड़े बुजुर्गों को आज सुरक्षा से ज़्यादा हमारे समय और सम्मान की ज़रूरत है। श्रोताओं, अनम की इन बातों पर विचार करने के लिए आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम और वेलकम बैक दोस्तों, अब वक्त है एक ऐसे सेगमेंट का जहां हम बात करते हैं भारत सरकार यानी गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई किसी नई योजना, नई स्कीम या डिजिटल रिफॉर्म्स की, जो सीधा आम जनता की लाइफ को इजी बनाती है। तो आज नई पहल के अंतर्गत हम जिस गवर्नमेंट स्कीम और पोर्टल की बात कर रहे हैं, वो हमारे बुजुर्गों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और उनके हक से जुड़ा है। अक्सर उम्र के साथ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स सालों पहले किए गए अपने इन्वेस्टमेंट्स या बैंक अकाउंट्स को भूल जाते हैं। सरकार ने देखा कि देश के अलग अलग बैंक्स में ऐसे अरबों रुपए पड़े हुए हैं जिनका कोई दावेदार ही नहीं है। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI ने एक बहुत ही शानदार डिजिटल स्कीम लॉन्च की है, जिसे आम भाषा में लावारिस संपत्ति पोर्टल और ऑफिशियल टर्म्स में उद्यम पोर्टल कहा जाता है। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि सरकार की ये नई पहल कैसे काम करती है और कैसे आप घर बैठे अपने बुजुर्ग

बैंकों की भूली बिसरी जमा पूंजी को वापस पा सकते हैं। सबसे पहले तो इस पोर्टल का नाम समझते हैं, उद्गम का फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट्स, गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अगर किसी बैंक अकाउंट या एफडी में लगातार 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक कोई ट्रांजैक्शन ना हुआ हो तो उसे अनक्लेम डिपॉजिट यानी लावारिस जमा मान लिया जाता है। पहले ऐसी डूबी रकम को ढूंढने के लिए हर बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे, जो कि एक बहुत बड़ा सिरदर्द था, लेकिन इस नई पहल के बाद अब ये काफ़ी आसान हो गया है। आपको बस अपने फ़ोन या लैपटॉप पर कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले गूगल पर जाकर उद्गम पोर्टल सर्च करें और ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें। अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए एक क्विक रजिस्ट्रेशन करें। अब यहाँ अपने बुजुर्गों का नाम और उनका कोई भी एक वैलिड आईडी जैसे पैन, आधार या वोटर आईडी डालकर सर्च करें। जैसे ही आप सर्च हिट करेंगे, देश के लगभग सभी मेजर बैंक्स में अगर उनके नाम पर कोई भी भूली बिसरी रकम या एफडी होगी तो वह तुरंत आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद आप सीधे उस बैंक ब्रांच में जाकर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उस मनी को क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट के इस यूजफुल स्कीम के बाद अब वक्त है रेडियो के उस पन्ने को पलटने का जो हमें सीधे इतिहास के गलियारों में ले जाता है। दोस्तों, आज के अंक में हम बात करेंगे गोवा क्रांति यानी गोवा लिबरेशन मूवमेंट की, एक ऐसे संघर्ष की जिसने ये साबित किया कि आज़ादी केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक सतत यात्रा है। दोस्तों, जब हम भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारे मन में 15 अगस्त 1947 की तस्वीर उभरती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दिन भारत का एक हिस्सा अभी भी विदेशी शासन के अधीन था। ये हिस्सा था गोवा। गोवा पर पुर्तगालियों का शासन 1510 से चला आ रहा था। लगभग 450 वर्षों तक गोवा पुर्तगाली उपनिवेश बना रहा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उम्मीद थी कि पुर्तगाल भी गोवा को स्वतंत्र कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोवा के लोगों ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। 1946 में समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहुँचे। उन्होंने वहाँ के लोगों को नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संगठित किया। उनका एक भाषण गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। धीरे धीरे आंदोलन तेज होने लगा। छात्र, किसान, मजदूर और आम नागरिक इस संघर्ष में शामिल होने लगे। लोगों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह किए, रैलियां निकाली और विदेशी शासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने निर्णायक कदम उठाया, ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने समन्वित अभियान चलाया। ये अभियान बहुत कम समय में सफल रहा। दोस्तों, 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव पुर्तगाली शासन से मुक्त हो गए और स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गए। टुडे गोवा इज अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इट्स बीचेस, कल्चर, म्यूजिक एंड टूरिज्म। लेकिन गोवा की पहचान केवल उसके पर्यटन स्थलों से नहीं, उसकी पहचान उस साहस, संघर्ष और बलिदान से भी है जिसने उसे स्वतंत्रता दिलाई। तो दोस्तों, इसी को याद करते हुए क्यों ना एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, आज जिस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हमारे ट्रेडिशनल मीन्स जैसे कोयला और पेट्रोल खत्म हो रहे हैं, ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो गया है कि हम ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ें। सोलर पैनल लगवाना, विंड एनर्जी का यूज़ करना या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अपनाना, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा एक छोटा सा कदम हमारी आने वाली जनरेशन को एक सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट दे सकता है। तो क्यों ना आज से हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने की एक छोटी सी कोशिश करें। इसी नोट के साथ वक्त है कार्यक्रम को समेटने का। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नई होस्ट के साथ, इसी समय सिर्फ युवाणी पर। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण अंचल के साथियों का कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

की प्राचीन परंपरा रही है। गांव के लोग आपसी समस्याओं का समाधान पंचायत के माध्यम से करते थे। आजादी के बाद इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए वर्ष 1992 में संविधान का 73वां संशोधन किया गया, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। इसके बाद गांव में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पंचायतों को विकास कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। पंचायत का मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों की जरूरतों को समझना और उनके अनुसार विकास योजनाओं को लागू करना है। पंचायत गांव और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। गांव के विकास में पंचायतों की सबसे बड़ी भूमिका बुनियादी सुविधाओं के विकास में दिखाई देती है। पंचायतें गांव में सड़क निर्माण, नालियों की सफाई, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन और सार्वजनिक स्थानों के रखरखाव का कार्य करती हैं। मान लीजिए किसी गांव में बारिश के दिनों में सड़कें खराब हो जाती हैं, ऐसे में ग्राम पंचायत इस समस्या को प्राथमिकता देती है और संबंधित विभागों से समन्वय करके सड़क निर्माण का कार्य करवाती है। इसी प्रकार यदि गांव में पेयजल की समस्या हो तो पंचायत हेडपंप, पाइपलाइन या जल संरक्षण योजनाओं के माध्यम से समाधान खोजती है। किसान भाइयों, पंचायतें केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना, बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाना पंचायतों की जिम्मेदारियों में शामिल है। आज कई पंचायतें गांव में विशेष अभियान चलाकर लोगों को शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हैं। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पंचायतों का योगदान उल्लेखनीय है। पंचायतें स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीकाकरण अभियान, पोषण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कराती रहती हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि अनेक पंचायतों ने लोगों को जागरूक करने, जरूरतमंदों तक सहायता पहुँचाने और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे ये साबित होता है कि पंचायतें संकट के समय भी गांव की सबसे मजबूत संस्था बनकर सामने आती है। श्रोताओं, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और गांव की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर करती है। पंचायतें किसानों की समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाने, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का कार्य करती हैं। इसके अलावा मनरेगा, जिसे आज जी राम जी जैसी योजना भी कहते हैं, जैसी योजनाओं की सफल क्रियान्वयन में भी पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंचायतें रोजगार के अवसर पैदा करने वाले कार्यों की पहचान करती हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग करती हैं। इससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और पलायन कम होता है। और हाँ साथियों, महिलाओं के सशक्तिकरण में भी पंचायतों का योगदान लगातार बढ़ रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आज लाखों महिलाएं ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य और विभिन्न पदों पर कार्य कर रही हैं। महिलाओं की भागीदारी से पंचायतों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला कल्याण जैसे मुद्दों को अधिक महत्व मिलने लगा है। कई महिला प्रधानों ने अपने गांव में उल्लेखनीय विकास कार्य करके ये साबित किया है कि नेतृत्व क्षमता किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। पर्यावरण संरक्षण में भी पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, तालाबों का पुनर्जीवन और स्वच्छता अभियान जैसे कार्य पंचायतों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। आज जल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियां बढ़ रही हैं। ऐसे समय में पंचायतों द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास भी गांव के भविष्य को सुरक्षित बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि पंचायतों के सामने कई चुनौतियां भी हैं। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी, हालांकि तकनीकी जानकारी का अभाव, योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी

नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम ग्रामीण लोक। मैं हूं आपकी मित्र उमा अली। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे गांव के विकास और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा हुआ है। हमारा विषय है गांव के विकास में पंचायतों की भूमिका। साथियों, भारत गांव का देश है। आज भी देश की एक बड़ी आबादी गांव में रहती है। यदि गांव विकसित होंगे तभी देश का समग्र विकास संभव होगा। गांव के विकास की इस यात्रा में पंचायतों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, पंचायत व्यवस्था भारत

कभी कभी जागरूकता की कमी विकास कार्यों में बाधा बनती है, लेकिन यदि पंचायत प्रतिनिधियों को उचित प्रशिक्षण मिले, ग्राम सभाएं नियमित रूप से आयोजित होती रहें, ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी भी होती रहे, तो इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। ग्राम सभा को पंचायत लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। जब गांव के लोग स्वयं विकास योजनाओं पर चर्चा करते हैं और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तब विकास अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनता है। प्रिय साथियों, पंचायतें केवल एक प्रशासनिक संस्थान नहीं है, बल्कि गांव के विकास की आधारशिला है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक क्षेत्रों में पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब पंचायतें मजबूत होंगी, ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ेगी और विकास योजनाओं का सही क्रियान्वयन होगा, तब हमारे गांव आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित बन सकेंगे। और जब गांव विकसित बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। इसी संदेश के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ इस लोकगीत के साथ, मगर आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जो कि आपसे करनी है और आपको कुछ मनोरंजन के गीत भी सुनवाने हैं।

0: साथियों, कोई भी काम अगर तैयारी के साथ किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि हम आपकी हर आगामी फसल की तैयारी अच्छी तरीके से कराएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्ता, जिसका विषय है खरीफ फसलों की तैयारी। वार्ताकार हैं जगवीर सिंह।
1: नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप लोग और खेतीबाड़ी में क्या चल रहा है आजकल? भाई, खरीफ का मौसम आने वाला है तो इसकी भी कुछ तैयारी आपने की है या नहीं की है? अरे भाई, तैयारी से हमारा मतलब है खेत की तैयारी से। चलिए हम ही आपको बता देते हैं। किसान भाइयों, ये तो आप जानते ही हैं कि हम किसान साथियों का मुख्य व्यवसाय तो खेती ही है, और इस खेती से होने वाली आमदनी से ही हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनके शादी विवाह करते हैं, और बड़े बूढ़े माँ बाप की देखरेख और इलाज का इंतजाम भी इसी से होता है। हमारे कहने का सीधा सा मतलब है कि खेती से हमारी आमदनी जितनी अधिक होगी, मुनाफा भी उतना ही अधिक होगा, और हम और हमारा परिवार उतने ही खुश रहेंगे। किसान भाइयों, अब बात आती है कि खेती से होने वाली अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए दो ही तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हमारी फसल यानी पैदावार अच्छी हो, और दूसरा हमारी फसल का मूल्य हमें सही मिले। फसल के मूल्य की अगर हम बात करें साथियों, तो ये तो पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मंडी में अगर हम फसल बेचने जाएं तो हमारी फसल का दाम हमें वही मिलता है जो उस दिन मंडी में चल रहा होता है। अब रही बात पैदावार की, तो हम अपनी मेहनत से और सही जानकारी से अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम यानी खरीफ के मौसम की। इसके लिए हमें सबसे पहले तो रबी के मौसम में ली गई फसलों के अवशेषों को खत्म

करना होगा। इन अवशेषों को खत्म करने के लिए हमें भूलकर भी उनमें आग नहीं लगानी चाहिए। आग लगाने से पुरानी फसलों के अवशेष भले ही जल जाएं, लेकिन जमीन के अंदर पाए जाने वाले सहयोगी व मित्र कीट और दूसरे तत्व भी आग में जलकर खत्म हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारी भूमि ठोस व कमजोर हो जाती है, जिससे एक तो हमारी पैदावार कम होती है, दूसरे इन तत्वों की अलग से पूर्ति करने के लिए हमें खर्च भी करना पड़ता है। किसान भाइयों, पिछली फसल के अवशेषों को खत्म करने का सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका है खेत की जुताई। इन दिनों जो खेत खाली पड़े हैं, किसान भाइयों को सबसे पहला काम तो खेतों की जुताई का ही करना चाहिए। अवशेष अगर ज्यादा हैं तो रोटावेटर से, अन्यथा कल्टीवेटर से गहरी जुताई करके अवशेषों को खेत में मिला दें। बीच में अगर एक दो वर्षा भी हो जाए तो एक बार फिर गहरी जुताई कर दें और मिट्टी पलटने वाले हल से गहरा जोत दें उसको। ऐसा करने से अवशेष और खरपतवार काफी हद तक समाप्त हो जाते हैं। किसान भाइयों, आपके जिन खेतों में ढलान अधिक है और पानी देने में आपको परेशानी आती है, तो अभी भी आपके पास समय है। ऐसे खेतों को आप लेवलर की मदद से थोड़ा थोड़ा करके समतल करा सकते हैं। खेतों को समतल कराने के साथ साथ आप उनकी मेड़बंदी भी करा सकते हैं, जिससे बारिश होने पर बारिश का पानी खेतों से बाहर न जाने पाए। यहाँ हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे साथियों, कि भूमि के कटाव को रोकने के लिए मेड़बंदी के साथ साथ आप खेत की मेड़ों पर वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। अगर आपको देसी खाद या गोबर की खाद को खेतों में डालना है, तो इसके लिए भी ये उपयुक्त समय है। खाद को खेतों में बखेरने के बाद हैरो या कल्टीवेटर से गहरी जुताई करके खाद को तुरंत खेतों में मिला दें, क्योंकि तेज हवा या आंधी चलने से खाद के कण हवा के साथ उड़कर खेतों से बाहर चले जाते हैं, जिससे खाद का पूरा लाभ फसल में नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, जिन खेतों में आपको लगता है कि अधिक लागत लगाने के बावजूद भी उनमें फसल अच्छी नहीं होती, तो आप उन खेतों की मिट्टी की जांच करा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। मिट्टी की जांच कराने के लिए आपको खेत में अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार का 6 इंच गहरा गड्ढा खुरपी या फावड़े की मदद से खोदना होता है, फिर ऊपर से नीचे तक छीलते हुए करीब 200 से 250 ग्राम मिट्टी लेते हैं। इसी तरह एक खेत में लगभग 4 या 5 अलग अलग जगहों से मिट्टी लेकर सबको आपस में अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और इसमें से आधा किलो के लगभग मिट्टी एक पॉलीथीन में भर लेते हैं। इसके साथ एक कागज पर किसान का नाम, पता, खेत का नाम और चेक नंबर के साथ साथ आप इस खेत में कौन सी फसल लेना चाहते हैं, ये सारी जानकारी लिखकर इस मिट्टी के सैंपल को मिट्टी की जांच के लिए कृषि विभाग के कार्यालय में, जहां पर मिट्टी की जांच होती है, वहां भेजकर खेत की जांच आप करा सकते हैं। इसी जांच के आधार पर आपको फसल लेते वक्त खाद की बताई गई मात्रा का ही उपयोग करना है। हो सकता है कुछ तत्व हमारे खेत की मिट्टी में ऐसे भी हो सकते हैं जो अत्यधिक मात्रा में हों और उन्हें अलग से देने की जरूरत ही न हो, इसलिए मिट्टी की जांच कराने के बाद हमारे किसान भाइयों को एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि फसल में खाद की मात्रा उतनी ही डालें जितनी की डालने के लिए कही गई है। ऐसा करने से एक तो हमारे पैसों की बचत होती है, अधिक खाद की वजह से मिट्टी में अनावश्यक तत्वों के जमा होने से खेत को ऊसर होने से भी बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, जिन फसलों की रोपाई करनी है, जैसे कि धान होते हैं, उनकी समय से बुवाई करने के लिए उनकी नर्सरी भी पहले से ही तैयार कर लें। नर्सरी तैयार करने के लिए रोग प्रतिरोधी, शंकर और उच्च क्वालिटी के प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें। बुवाई के समय जिन खाद, बीजों और कीटनाशकों की आवश्यकता हो, उन्हें पहले ही खरीद लें और घर में छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ताकि आपकी अनुपस्थिति में वो इनसे छेड़छाड़ ना करें और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, और पहली बारिश होने पर ही इनकी बुवाई कर दें। बुवाई का काम समय से पूरा करें। अगर आपको किसी फसल की अगेती या पछेती बुवाई करनी है, तो आप बीज की उन्हीं पछेती या अगेती विशेष किस्मों का ही उपयोग करें। इससे आपकी फसल भी समय पर पककर तैयार होगी और पैदावार भी सही आएगी।

0: साथियों, अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल चक्र भी अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। फसल चक्र अपनाने से भूमि के अंदर पोषक तत्वों का संतुलन भी बना रहता है, जो कि अधिक पैदावार में सहायक सिद्ध होता है। किसान भाइयों, फसल पकने के बाद अब बारी आती है उसकी कटाई और मड़ाई की। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता होती है। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि मौसम साफ है या नहीं, कहीं बादल तो नहीं हो रहे और वर्षा की संभावना तो नहीं है। रेडियो, टीवी और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से मौसम विभाग द्वारा दी गई मौसम संबंधी जानकारी पर भी आप अवश्य विचार करें और मौसम खुलने पर ही कटाई मड़ाई का काम पूरा करें। फसल का भाव अगर आपकी ज़रूरत के हिसाब से ठीक चल रहा हो तो मंडी ले जाएं, अन्यथा भंडारण कर दें। लेकिन उपज का भंडारण करने से पूर्व ये अवश्य देख लें कि कहीं इसमें नमी तो नहीं। भंडारण हमेशा ऊंचे, सूखे और हवादार स्थानों पर ही करें।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे।
2: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था खरीफ फसलों की तैयारी। वार्ताकार थे जगवीर सिंह। तो उम्मीद है किसान साथियों, आपने अपनी खरीफ की फसलों की तैयारी की योजना बना ली होगी, और अगर आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते रहेंगे तो निश्चय ही इस वर्ष आपकी पैदावार बहुत ही अच्छी होने वाली है।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: साथियों, नई किस्मों में आज हम बताएंगे आपको गोभी की अगेती किस्मों के बारे में। पहली है पूसा मेघना। इसका फूल सफ़ेद व कॉम्पैक्ट होता है, अक्टूबर के प्रारंभ में तैयार हो जाती है, जून जुलाई में नर्सरी के लिए उपयुक्त है। दूसरी है पूसा अश्विनी। ये गोभी की उन्नत किस्म है, फूल सफ़ेद, ठोस और आकर्षक होता है, अक्टूबर के मध्य में तैयार हो जाती है, 18 से 20 टन प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन क्षमता देती है। पूसा कार्तिकी अपेक्षाकृत नई और उच्च उत्पादक किस्म है, सफ़ेद व कॉम्पैक्ट फूल होता है, अक्टूबर के अंत से नवंबर के प्रारंभ तक तैयार हो जाती है। इसके अलावा पूसा अर्ली सिंथेटिक भी है जिसकी बाज़ार में बहुत मांग थी। तो उम्मीद है साथियों, ये आपको हमारा जो क्रम है अवश्य ही पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें हम आपको नई नई किस्मों के बारे में बताते हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: किसान साथियों, आप जानते हैं मंडी भाव। अरहर दाल का भाव रहा 9,800 से 10,100 रुपए प्रति क्विंटल। बाजरा 1,950 से 2,000 रुपए। जौ का भाव रहा 2,520 से 2,600 रुपए। चना दाल 7,350 से 7,600 रुपए प्रति क्विंटल। साबुत उड़द 8,550 से 8,750 रुपए। मक्का का भाव रहा 2,140 से 2,220 रुपए। सरसों 6,800 से 6,950 रुपए। और गेहूं का दाम रहा 2,500 से 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। तो साथियों, ये था मंडी भाव। और अब जान लेते हैं मौसम का हाल भी। बीते 24 घंटों में आगरा और उसके आसपास का अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में अनुमान है कि अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री ही बना रहेगा। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं गोपाल सिंह परमार की आवाज़ में ये लोकगीत।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक। मीडियम वी पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपकी रेडियो साथी मनीषा अरोरा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश।

होंगी। वैसे साथियों, कहते हैं किसी भी चीज की असली कीमत हमें तब पता चलती है जब वो हमारे पास नहीं रहती। जैसे कि गर्मियों में जब कभी भी बिजली चली जाती है तो हमें पंखे की कीमत समझ में आती है। लगता है कि जैसे तैसे गर्मी दूर कैसे भागेगी अगर पंखे की हवा मिल जाए, और अगर प्यास लग जाए और आसपास पानी ना हो तो हमें पानी की कीमत समझ में आ जाती है। और जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तब सही सलाह की कीमत समझ आती है ना? तो इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अहमियत हमें हर कदम पर महसूस होती है। जैसे कि हम अगर किसी परेशानी में होते हैं तो उनके अनुभव और उनकी सीख हमेशा हमारा रास्ता आसान बना देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जिनकी बातों से हम फायदा उठाते हैं ना, उन्हीं की बातों को सुनने के लिए हमारे पास समय कम पड़ जाता है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपसे गोल मोल बातें क्यों कर रहे हैं, सीधी बात क्यों नहीं कर रहे? तो कोई ना, आज की चर्चा का विषय हमारे परिवार से, समाज से और हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है, जो है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर। ये हमें याद दिलाता है कि अनुभव, सम्मान और अपनापन किसी भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं होते, बल्कि वो उस किताब की तरह होते हैं जिसके कि हर पन्ने में जीवन का अनुभव लिखा होता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि कई बार जिन लोगों ने पूरी जिंदगी परिवार के लिए मेहनत की, वही लोग बढ़ती उम्र में सम्मान के लिए और अपनेपन के लिए तरस जाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब हम छोटे थे तो हमें चलना भी नहीं आता था, है ना? तब किसने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया? या फिर जब कभी हमें बुखार आता था तो कौन रात भर जागकर हमारा ध्यान रखता था, हमारी देखभाल करता था? जी हाँ, हमारे माता पिता ही थे वो, और थे हमारे घर के बुजुर्ग लोग। लेकिन वही बुजुर्ग आगे चलकर अकेलेपन का या अनदेखी का, या फिर यूं कहें कि बुरे व्यवहार का सामना करते हैं। साथियों, हम ये नहीं कह रहे कि दुर्व्यवहार का मतलब है मारपीट करना। जी नहीं, दुर्व्यवहार केवल मारपीट नहीं होता। उनसे ऊंची आवाज में बात करना, उनकी बातों को नज़रअंदाज करना, या फिर उन्हें अकेला छोड़ना, या फिर उनका मजाक उड़ाना भी गलत व्यवहार माना जाता है। अब देखिए ना, मान लीजिए कि अगर घर में सभी सदस्य हैं, है ना, और घर में बुजुर्ग में घर में दादाजी हैं, दादी जी हैं। अगर दादाजी बार बार हमसे एक ही बात पूछते हैं, अगर हम उन्हें गुस्सा करके जवाब देते हैं तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचती है, कितना दुख लगता है उन्हें, है ना? यही अगर हम उन्हें प्यार से जवाब दें तो उन्हें अच्छा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि कोई मेरा अपना है जो मेरी बातों को सुनता है, समझता है, मेरी बातों का जवाब देता है, है ना साथियों? याद रखिए, बुजुर्ग हमारे परिवार की जड़ होते हैं। जिस तरह पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं तभी पेड़ फलता है, फूलता है, उसी तरह से जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके सम्मान से परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। तो आइए हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा ही संकल्प ले लें अगर, कि अपने घर के हर बुजुर्ग का सम्मान करेंगे, उनकी हर बात को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। क्योंकि साथियों, आज तो हम जवान हैं, हमारे शरीर में ताकत भी है, हम सारे काम फटाफट और फुर्ती के साथ कर सकते हैं। लेकिन एक दिन हमें भी बुजुर्ग बनना है, तो फिर अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उन्हें समय दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि
उनके चेहरे

0: चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहे, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार जो करते हैं।
1: चिक चिक बम, चिक बम बम बम, चिक चिक बम।

0: सोचिए सोचिए, सोचकर रखिए, तब तक आगे बढ़ते हैं हम और आपको बताते हैं पवन ऊर्जा यानी हवा से बनने वाली बिजली के बारे में। चौंक गए ना आप भी कि हवा से बिजली? जी हाँ, आपने हाईवे के किनारे या खेतों में बहुत बड़े बड़े से सफ़ेद रंग के पंखे ज़रूर देखे होंगे, है ना? इनको हम विंड टर्बाइन या पवन चक्की भी कहते हैं। क्या होता है, जब हवा चलती है तो इसके पंखे घूमने लगते हैं। पंखों के घूमने से अंदर जो लगी हुई मशीन होती है वो बिजली पैदा करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल का डायनमो चलता है। साथियों, अब आप ये पूछेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है, तो इसकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन वजह हैं। पहली तो ये कि इससे बिजली स्वच्छ होती है। कोयले से बिजली बनाने से धुआं निकलता है जिससे कि हवा गंदी हो जाती है और सांस की बीमारी हो जाती है, लेकिन जो पवन ऊर्जा होती है उससे कोई प्रदूषण नहीं होता। एक तो हवा मुफ्त है इन पवन चक्कियों को बनाने में और इसे लगाने में, उनकी देखभाल करने के लिए हजारों लोगों को काम मिलता है। हमारे देश में गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं। तो साथियों, आप सबसे हमारी बस एक ही गुजारिश है कि बिजली की बचत करें, जरूरत ना हो तो लाइट पंखे को बंद रखें, पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो हवा को साफ रखते हैं, और अपने बच्चों को भी पवन ऊर्जा के बारे में जरूर बताएं। साफ हवा, साफ बिजली से ही हमारे देश का भविष्य भी साफ होगा। बस यही आपको करना है साथियों। मिलते हैं आपसे इस क्षणिक अंतराल के बाद।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहतनामा की, जो हम हर सोमवार को आपके लिए लेकर आते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके घर का जो पानी का पाइप है वो अंदर से धीरे धीरे जाम हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि सब कुछ ठीक ही लग रहा है? शुरुआत में आप यही सोचेंगे कि सब कुछ ठीक ही है, लेकिन अगर समय रहते आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, पानी का बहाव रुकने लगेगा, है ना, और धीरे धीरे करके पानी बिल्कुल भी बहना बंद हो जाएगा। साथियों, ठीक ऐसा ही हमारी आंखों के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इसे हम कहते हैं ग्लूकोमा, जिसे कई लोग आंखों का साइलेंट चोर भी कहते हैं। दरअसल एक ऐसी बीमारी होती है जो धीरे धीरे आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत में इसके लक्षण अक्सर दिखाई ही नहीं देते, इसीलिए कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी आंखों पर असर पड़ रहा है। तो फिर आइए जानते हैं अनिंद्र सिंह की डॉक्टर तिरुपति नाथ से बातचीत में, और उसमें ये जानते हैं कि ग्लूकोमा क्या है, इसके कारण और इसके लक्षण क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, इसे बचाव कैसे किया जा सकता है।
5: आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्ज की जो छुप कर वार करता है और जिसका पता रोगी को तब चलता है जब नुकसान हो चुका होता है, नुकसान भी ऐसा कि वो अपनी आँखों से महरूम हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लूकोमा की, और ग्लूकोमा के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आँखों के विशेषज्ञ डॉक्टर तिरुपति नाथ जी। डॉक्टर साहब नमस्कार।
6: बहुत बहुत नमस्कार है। अमूमन ग्लोकोमा तो हम शहरों में इस नाम से जानते हैं
5: जी, जी।
6: लेकिन अगर हम ग्रामीण अंचल की बात करें तो इसे हम काला पानी, काला मोतिया, संबल वायु, कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम प्रचलित हैं। ये बीमारी एक अगर हम सामाजिक स्तर पर बात करें तो

साथियों, आज 15 जून है और आज का दिन खास भी है क्योंकि आज है विश्व पवन दिवस भी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पूछेंगे आपसे आज का प्रश्न। तो आपको सोचकर ये बताना है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है।

0: ये आंख में होने वाले अंधेपन का दूसरा प्रमुख कारण है, और इससे होने वाला जो अंधापन है वो स्थायी है, उसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता। इसी बात से इसकी गंभीरता का हम अंदाजा लगा सकते हैं।
1: जी
0: एक आंख के बारे में बात करें तो आंख एक कैमरे की तरह होती है।
1: जी
0: उस कैमरे में एक डोरी होती है जो आंख को दिमाग से कनेक्ट करती है।
1: जी
0: उस डोरी को हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। आंख जो होती है इसके अंदर एक द्रव्य होता है जो एक आंख के अंदर निश्चित दबाव बनाए रखता है।
1: लिक्विड रहते हैं।
0: हाँ,
1: अच्छा
0: तो उस लिक्विड के नॉर्मल फ्लो को मेंटेन करने से उस आंख का दबाव निश्चित बना रहता है। अगर वो दबाव बढ़ जाता है तो वो काला पानी का प्रमुख कारण बन
1: कारण
0: जाता
1: होता
0: है।
1: है।
0: जब भी ये आंख का प्रेशर बढ़ता है, वो द्रव्य का दबाव बढ़ता है, तो वो उस आंख की नस को डैमेज करना यानी कि नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, और वो नुकसान धीमे धीमे
1: अच्छा,
0: होता चला जाता है और वो एक स्थायी अंधेपन की तरफ आदमी को धकेल देता है।
1: जो आपने बताया कि एक द्रव बनता है हमारी आंख में और उसके प्रेशर से धीरे धीरे हमारी आंख में नुकसान होना शुरू हो जाता है। कोई अगर सामान्य आदमी है तो वो ये कैसे जान पाएगा कि हमारी आंख में इस द्रव का प्रेशर जो है वो ज्यादा हो रहा है या कम है? उसके
0: बिल्कुल
1: लक्षण
0: सही
1: क्या हैं? कैसे जान पाएंगे हम?
0: जी। देखिए, सबसे आसान और सबसे जरूरी बात कि आदमी अपनी आंखों को तभी दिखाता है जब उसे कोई तकलीफ होती है। परंतु अगर हम अपनी आंखों का एक उम्र के बाद अगर नियमित जांच कराते रहें, साल में एक बार, तो हम कई बार इस बीमारी का शुरुआती दौर में ही पता कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: जैसे काला पानी कई प्रकार का होता है, तो कुछ
1: जी
0: प्रकार के काले पानी में हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि उसके कोई ऐसे लक्षण होते ही नहीं जब तक कि वो काफी ज्यादा नुकसान ना पहुंचा चुका हो।
1: जी
0: जो सबसे प्रमुख लक्षण है इसका, वो एक आंख के अंदर दर्द होना, चश्मे का नंबर बार बार बदल जाना, ये लेकिन हर मरीज में नहीं मिलते। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रमुख बातें जो मैं यहां पर रखना चाहूंगा कि 40 वर्ष से अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो अपनी आंख की नियमित जांच कराएं, जिससे कि आपको काले पानी जैसे रोग के बारे में शुरुआती दौर में ही पता चल जाए।
1: मतलब ये हुआ कि काले पानी के रोग का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी उम्र में हो सकता
0: हो
1: है,
0: सकता है
1: लेकिन 40 साल की उम्र में इसकी संभावनाएं
0: बढ़
1: ज्यादा
0: जाती
1: होती
0: है,
1: हैं।
0: बढ़
1: जी
0: जाती है। किन लोगों
1: जी
0: को ये हो जाता है? तो उनमें सबसे पहले जिन लोगों को ज्यादा मोटा चश्मा लगता है,
1: जी
0: चाहे वो माइनस का मायोपिया हो, चाहे वो प्लस का हाइपरमेट्रोपिया हो, उन लोगों के अंदर काले पानी होने का रिस्क रहता है उम्र के साथ।
1: जी
0: जिनकी परिवार में पहले किसी को काला पानी हो चुका हो, उनके,
1: आनुवंशिक
0: हाँ, उनके
1: अगर
0: अंदर
1: किसी में लक्षण
0: वंशानुगत ये
1: है
0: बीमारी आ
1: आ
0: सकती है,
1: सकती है।
0: तो उन लोगों को अपनी आंख की जांच जरूर करानी चाहिए जिनके परिवार में पहले किसी को काला पानी रहा हो। किसी की आंख में कभी कोई चोट लगी हो तो चोट की आंखें काला पानी डेवलप करने का रिस्क रखती हैं।
1: जी
0: जिसको डायबिटीज हो, डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड होती है, मधुमेह की बीमारी, ये आगे चल के आंखों को प्रभावित करती है और आंखों के अंदर काला पानी भी पैदा कर देती है। और सबसे प्रमुख जो रिस्क फैक्टर है वो है आंख का दबाव का बढ़ा होना,
1: जी
0: जो किसी भी कारण, लंबे समय तक स्टेरॉयड दवाइयां अगर आप खाते रहेंगे तो उससे भी आंख का दबाव बढ़ जाएगा। ये सारी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे काले पानी होने का रिस्क बढ़ जाता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे आंख से कभी कभी पानी आता है, तो क्या वो भी इसमें
0: बहुत
1: भूमिका
0: आपने
1: रखता है क्या?
0: काला पानी है ये बेसिकली आंख के अंदर जो पानी है, आंख के अंदर जो द्रव्य है उससे संबंध रखता है।
1: जी
0: जो आंसू होता है उसका काले पानी से कोई
1: वास्ता
0: रिश्ता
1: नहीं।
0: नहीं है।
1: किसी को अगर आंखों में पानी निकलता है तो उसको भी काले पानी होने की संभावना रहेगी और डॉक्टर से उसका चेकअप कराना जरूरी है।
0: अगर आंख से पानी बह रहा है तो भी अपने डॉक्टर को दिखाइए और आंख की एक कंप्लीट पूरी जांच कराइए, तो अगर आंख के अंदर काले पानी के लक्षण होंगे तो वो जल्दी पता चल जाएंगे।
1: हमारे ग्रामीण साथी हैं, कोई लक्षण ऐसे कैसे वो जान सकते हैं कि उनको भी काला मोतिया है? अगर है तो कैसे बचें फिर?
0: देखिए, कई बार क्या होता है, जब आंख का दबाव बढ़ा होता है तो एक जब वो निश्चित सीमा के ऊपर चला जाता है तब वो आंख के अंदर दर्द पैदा करता है। उससे पहले वो आंख के अंदर कोई दर्द पैदा नहीं करता।
1: अच्छा।
0: अगर आंख का दबाव बढ़ा होगा तो आपको बल्ब के चारों तरफ रंगीन घेरे दिखाई देंगे, तो अगर आप अपनी आंखों को एक आंख करके बंद करके एक आंख से देखें और आपको बल्ब के चारों तरफ रंगीन घेरे काफी सारे दिखाई दें, तो इसका मतलब आपकी आंख का दबाव बढ़ा हो सकता है।
1: तो ये सारे लक्षण हैं जिससे आम आदमी समझ सकता है,
0: जिससे
1: भी सावधानी बरतनी।
0: दूसरी एक चीज कि अमूमन हम दोनों आंखों से देखते हैं
1: जी,
0: और ऐसा कभी होता है कि हम जानबूझ के अपनी एक आंख कवर करें और दूसरी आंख से देखने की कोशिश करें?
1: जी
0: एक एक आंख बंद करके देखना चाहिए और हमें तब पता चलता है कई बार कि इस आंख से हमें काफी कम दिखाई दे रहा है।
1: जी जी
0: जो काला पानी है ये हमारे दृष्टि क्षेत्र को, विजुअल फील्ड को प्रभावित करता है, यानी कि
1: देखने का आंख का जो दायरा है देखने का,
0: उसे ये कम करता जाता है।
1: जी जी
0: सामने की दृष्टि आपकी अंत तक नहीं जाएगी, लेकिन जो दृष्टि क्षेत्र जो है वो धीमे धीमे सिकुड़ता सिमटता चला जाएगा। तो जब आप अपनी एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखेंगे और आपको दृष्टि क्षेत्र कम दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपको काले पानी का लक्षण है और अपने डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हर आदमी करके देख सकता है।
1: जी जी जी अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब किसी को काला मोतिया हो गया है तो फिर वो

0: क्या करें?
1: काले पानी के इलाज के लिए और काले पानी की जांच के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम उसे जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उसकी पहचान करें। काला पानी का इलाज बेसिकली काला पानी के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है
0: जी।
1: शुरुआती दौर में तो आंख में डालने वाली दवाइयां, अगर आंख का प्रेशर एक सीमा के नीचे है तो सिर्फ दवाइयों से और लेजर के द्वारा इसका कंट्रोल किया जा सकता है
0: जी।
1: जब यह दबाव दवाइयों और लेजर के द्वारा भी कंट्रोल नहीं आता है आंख का प्रेशर, तो फिर हमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। और कई बार जब लंबे समय तक आंख का दबाव बढ़ा रहता है, किसी भी चीज के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, तो कई बार ऐसे मरीजों की आंख की रोशनी परमानेंटली चली भी जाती है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक सामान्य आदमी, उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आंखों की बीमारियों से बचने के लिए?
1: छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी आंखों को कई बार कई बीमारियों से बचा लेंगे। जैसे कि जब भी मौसम बदलता है, गर्मी ज्यादा होती है, धूल होती है, तो हमेशा आंखों को ढक के रखें, यानी कि चश्मा पहने, धूप में निकलें तो काला चश्मा पहन के चलें। उससे आपकी आंखें एलर्जी से बचेंगी, पानी आने की समस्या जो आंख के अंदर रहती है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। पर्दे की जो दिक्कतें बढ़ती उम्र के साथ, उनमें भी आपको थोड़ा सा बचाव मिलेगा। उससे जो हमारी सूर्य की रोशनी है, ये हमारे आंख के पर्दे के लिए अच्छी नहीं होती, तो सूरज में जब भी निकलें, धूप में काम करने निकलें, दिन भर धूप में ही काम करते हैं, उनको सबसे जरूरी है कि वो जब बहुत धूप हो
0: तो सिर को ढक के रखें, कैप पहन सकते हैं, पगड़ी बांध सकते हैं, चश्मा अगर लगा सकते हैं तो चश्मा लगा के सूरज की डायरेक्ट रोशनी से बचें,
1: ये बहुत जरूरी है।
0: हमारे बहुत से मजदूर भाई कहीं पे भी काम करते वक्त कभी कभी पानी से मुंह धो लेते हैं, आंखें धो लेते हैं।
1: आंख को धोने का बेसिकली तात्पर्य उससे ये निकलता है कि आंख में जो गंदगी दिन भर की चली जाए वो बाहर निकल जाए
0: जी।
1: अगर आपको अपनी आंखों को धोना है, जब आप थक जाते हैं, अपना मुंह धोते हैं, तो अपनी आंखों को विशेष तौर पे सिर्फ स्वच्छ पीने वाले पानी से ही धोएं, क्योंकि यह पानी आपकी आंखों में जाएगा और अगर ये साफ नहीं हुआ तो ये आंख के अंदर संक्रमण पैदा कर सकता है। तो इसलिए उससे जो आप फायदा लेना चाहते हैं वो ना मिलके आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो स्वच्छ पीने वाले पानी से ही आंखों को साफ करें
2: जी। डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा क्या है, क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इससे बचा जाए, इन सब के बारे में आपने हमारे श्रोता साथियों को बताया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद
3: साथियों, अभी आपने अनेंद्र सिंह की डॉक्टर तिरुपति नाथ से बातचीत सुनी, जिसमें हमने ग्लूकोमा के बारे में कई सारी जानकारियां ली। तो अब आप जान ही गए होंगे कि आंखों की 40 साल के बाद नियमित जांच होनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी आई ड्रॉप इस्तेमाल नहीं करना है। आंखों में अगर आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। साथियों, वैसे अभी कल ही मैं भी डॉक्टर के आंखों के एक डॉक्टर से अपनी आंखों की जांच करवा कर आई। वहाँ मुझे एक महिला मिली, तो उस महिला की एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। तो मैंने उनसे उनका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी आंख में चोट लग गई थी, वो भी पौधे की टहनी से। वो नीचे झुककर पौधों को पानी दे रही थी कि कांटों वाली टहनी आंख के अंदर जाकर चुभ गई, जैसे कि आंख में घाव हो गया है। वो बहुत परेशान थी और दर्द में भी थी। तो हमने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि जल्दी ही उनकी आंख ठीक हो जाएगी, और उनकी आंख के जल्दी ठीक होने की हमने कामना भी करी और उनसे वादा किया उनकी पसंद का गीत सुनवाने का। तो और ये भी कहा कि आप परेशान ना हो, हम आपकी पसंद का गीत ज़रूर सुनवाएंगे। वैसे उन बहन का नाम सुनैना था, तो चलिए उन बहन की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: साथियों, आज हमने आपसे प्रश्न किया था कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब है 20 जून को। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं पर संपन्न करने की मनीषा अरोरा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे

0: पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
1: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico held delegation-level talks in Bratislava today. Following the talks, both leaders signed 11 agreements to expand the bilateral cooperation. The agreements were inked in areas of labour migration, defence, digital technologies, higher education and quantum communication. Addressing a joint press conference after the talks, Prime Minister Modi said, Elevation of relations to the status of a comprehensive partnership symbolizes shared beliefs, priorities and future.
3: हमने अपने संबंधों को comprehensive partnership का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: Mr. Modi also conveyed his appreciation to Mr. Fico for the cooperation Slovakia extended in finalizing the India-EU Free Trade Agreement. In his remarks, PM Fico hailed India-EU FTA, describing it as one of the most ambitious trade pacts ever signed. The French city of Evian is also

एवं कर्तव्य बोध जैसे मानवीय गुणों का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इतिहास बदल गया, समाज संस्थाओं में बड़े बड़े परिवर्तन हुए, लेकिन भारतीय समाज में परिवार संस्था आज भी किसी न किसी रूप में ध्रुव बिंदु की तरह जीवित है। भौतिकवाद की आंधी, औद्योगिकरण और पश्चिमी प्रभावों के परिणाम स्वरूप शनि शनि पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यह प्रक्रिया भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली में विघटन के बाद अब एकाकी परिवारों में और व्यक्तिगत स्तर पर भी चल रही है, गांवों से शहरों तक और शहरों से गांव तक, गांवों में कुछ कम, नगरों में कुछ ज्यादा, महानगरों में सबसे अधिक। परिवेश जनित कारण भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इसका स्वरूप भी गांवों, कस्बों, नगरों, महानगरों में भिन्न है, लेकिन मनुष्य का अपने सांस्कृतिक मूल्यों की धुरी से उखड़ना और इस उखड़न को अपने भीतर से स्वीकृति ना पाना सभी जगह समान है, इसलिए समस्या भी लगभग समान ही है। परिवार की टूटन ने व्यक्तियों का विकास ही नहीं अवरुद्ध किया, अपितु व्यक्तित्व को भी बिखराव प्रदान किया। परस्पर सहयोग, एक दूसरे के लिए त्याग, सहानुभूति, वृद्धों, अशक्तों की सेवा, मिल बांटकर खाना, परस्पर मानसिक चिंताएं बांटना, संयुक्त परिवार के सामूहिक मनोरंजन में भाग लेना, अनुशासन पा अच्छी नागरिकता ग्रहण करना आदि गुण ही व्यक्तित्व बनाते हैं, और ऐसे व्यक्तित्व समूहों से ही शिष्ट समाज का निर्माण होता है। परंतु आज परिवार के विघटन ने अकेलेपन के एहसास, अनावश्यक भय, तनाव, असुरक्षा की भावना तो दी ही है, इसके साथ ही व्यक्तियों में मानसिक विकृतियों, मनोरोग और आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दे दिया है। व्यक्ति परिवार एवं समाज का निर्माता ही नहीं है, बल्कि उसके स्वयं का व्यक्तित्व भी परिवार एवं समाज के द्वारा ही निर्मित एवं निर्देशित होता है। परिवार के क्रियाकलाप उसकी गतिविधियों को अनेकों प्रकार से प्रभावित करते हैं। संयुक्त परिवार के विघटन ने शिशु एवं किशोरों को दादा दादी के स्नेह, उपदेश, प्रेरणा एवं संरक्षण से वंचित कर दिया। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों में वात्सल्य की गंगा होती थी, दुलार की जमुना होती थी और अनुभव की सरस्वती होती थी। अंधी उपभोक्तावाद की दौड़ के कारण हम अपनी वल्दियत ही भूल बैठे। जिसने पाला पोसा, बड़ा बनाया, उन्हीं की उपेक्षा करने लगे। आज शैशवावस्था में ही बच्चे को व्यक्तित्व निर्माण की प्रथम संस्था परिवार से वंचित कर दिया जाता है। शहरी कामकाजी युवतियां बच्चों को पालना घरों में छोड़कर जाने को विवश हैं। दादा दादी के संरक्षण और शिशु घर में पलने वाले बच्चों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर होता है। कारण एकदम स्पष्ट है, परिवार में शिशु को बुजुर्गों का अनुभवी संरक्षण, माँ की ममता, पिता का वात्सल्य, बहन भाई का स्नेह मिलता है। शिशु द्वारा कुछ सीखने एवं अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता तो बाद में पड़ती है। स्कूल एवं समाज इस आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं, परंतु व्यक्तित्व के विकास के लिए जिन संस्कारों की आवश्यकता होती है उनका बीजारोपण तो परिवार संस्था में ही होता है। परिवार सदियों से व्यक्तित्व निर्माण का उद्गम स्थल रहा है। वह मनुष्य की शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास में असाधारण भूमिका निभाता है। परंतु आज पारिवारिक संस्था के विघटित मूल्यों के कारण व्यक्तित्व के तीनों स्तर पर बिखराव ही बिखराव दिखाई पड़ता है। आज परिवार टूट रहे हैं, विवाह विच्छेद की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे व्यक्ति तनाव एवं कुंठा के कारण अपने व्यक्तित्व को बिखरने से बचा नहीं पा रहे हैं। परिवार वह संस्था है जिसका भय टूटने की प्रक्रिया से बचाता है। पारिवारिक ढांचों के बिखरने से अवैध संबंधों, यौन उच्छृंखलता, किशोर अनुशासनहीनता में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, क्योंकि परिवार टूटने से व्यक्ति नियंत्रण एवं मर्यादा के भय से मुक्त हो गया है, जिससे उसके व्यक्तित्व में उच्छृंखलता आ गई है। टूटने की प्रक्रिया जब पूरे समाज में चल रही है तो व्यक्ति चाहे अनचाहे इस प्रक्रिया में शामिल ही है। व्यक्तियों से ही जब परिवार

0: और समाज बनता है तो उनकी पहचान भी व्यक्तिगत गुणों से होती है। व्यक्ति शरीर मन से जितने स्वस्थ और संपन्न होंगे, समाज भी उसी अनुपात में स्वस्थ एवं संपन्न माना जाएगा। कोई समाज कितना स्वव्यवस्थित या विघटित है, इसकी जांच उसमें रहने वाले व्यक्तियों के मानसिक संतुलन और चारित्रिक गुणवत्ता के आधार पर ही की जाती है। आज सभ्यता जितनी तेजी से आगे भाग रही है, संस्कृति उस गति से काफी पीछे छूटी जा रही है। परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और विवेक सभ्यता की अंधाधुंध दौड़ में पिछड़कर उन्हें काट नहीं पाता। सभ्यता और संस्कृति की विकास गति में जितना अधिक अंतर होता है, समाज में अव्यवस्था उतनी ही अधिक फैलती है। आज पारिवारिक विघटन, बिखरता दाम्पत्य और बिखरता व्यक्तित्व इसी के ही परिणाम हैं।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आप सुन रहे थे वार्ता टूटते परिवार बिखरता व्यक्तित्व। वार्ताकार थी डॉक्टर सुनीता सक्सेना। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:18 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
3: आरबीआई कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जन भागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देशभर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा।
7: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल

0: ऑपरेशन के लिए हब बनेगा और ख़ासतौर पर यहाँ एरोट्रोपोलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
1: इस पहली उड़ान से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ भेजा गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के प्रतिबद्ध है और इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।
2: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज लखनऊ, बेंगलुरू, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़कर एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयोजन के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। इस सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स एक साथ एक मंच पर जुटे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार की इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज

0: जोन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में आज से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। 12 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से शुरू हुआ। श्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली। भारत की इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
2: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूंगा कि एक चुनौती है। ट्रस्ट जो राम कथा संग्रहालय है, हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
0: सोमवती अमावस्या आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आस्था के साथ मनाई गई। प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ घाट पर जल अर्पित कर पूजन किया और जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र दान किया। सोमवार और अमावस्या का यह मेल स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत का फेरी देती हैं। अधिक मास का भी समापन सोमवार को पड़ने से आज बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं जलाभिषेक किया। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
0: इस अवसर पर अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद। कहा, अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र। 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जनभागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
5: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
5: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
5: चलो,
4: कहाँ
5: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव,
7: RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: मीडियम
7: वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31

30 मिनट हो चुके हैं श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन हमें एक ऐसे विषय पर सोचने के लिए प्रेरित करता है कि जो हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारी संवेदनाओं से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। श्रोताओं, आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। कहा जाता है कि एक वृक्ष अपनी जड़ों से ही मजबूत होता है, और ठीक उसी तरह से हमारा परिवार और हमारा समाज अपने बुजुर्गों के अनुभव, संस्कार और उनके आशीर्वाद से सशक्त बनता है। लेकिन श्रोताओं, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जीवन की संध्या में कुछ बुजुर्ग उपेक्षा, अपमान, अकेलापन और दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए विवश हो जाते हैं।

बाग को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की। जिस माँ ने रातों की नींद त्याग कर बच्चों को सुलाया, जिस पिता ने अपनी इच्छाओं को त्याग कर बच्चों के सपनों को पंख दिए, क्यों वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में केवल सम्मान, अपनापन और दो मीठे शब्दों के लिए भी तरस कर रह जाते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि कटु शब्द, उपेक्षा, आर्थिक शोषण और भावनात्मक दूरी भी उनके हृदय को गहरी चोट पहुंचाती है। कई बार वे अपनी पीड़ा कह भी नहीं पाते और चुपचाप सब कुछ सह जाते हैं। कैसी विडंबना है। एक समय था जब अपने परिवार के साथ यही बुजुर्ग कुछ ऐसा सोचते थे। चिक बम बम बम चिक चिक बम।

श्रोताओं, बुजुर्ग घर का वो दीपक है जिसकी रोशनी अनुभव से आती है। हम अपने बुजुर्गों को सम्मान दें क्योंकि कल हमें भी उसी राह से गुजरना है। घर के बुजुर्ग केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। हम उनके अनुभवों को सुने और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वे हमारे जीवन में आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कल थे। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां सुख, शांति और समृद्धि स्वयं निवास

श्रोताओं, बुजुर्ग हमारे जीवन की जड़ें हैं और मजबूत जड़ों वाला पेड़ ही ऊंचाइयों को छूता है। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद वो संपत्ति है जो हर कठिनाई को आसान बना देती है। दोस्तों, बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद पाने का सबसे आसान तरीका है सम्मान, समय, संवेदनशीलता और कुछ सरल उपाय, जैसे रोजाना अपने घर के बुजुर्गों से आदर पूर्वक बात करें, उनकी बातें धैर्य पूर्वक सुने, बीच में टोके नहीं, उनकी सेहत और जरूरत का ध्यान रखें, उनके अनुभवों से सीखें, समय समय पर उनका हालचाल पूछें, परिवार के निर्णय लेने में उनकी राय जरूर लें, उनके जन्मदिन, वर्षगांठ और खास दिनों को याद रखें और उन्हें सम्मान पूर्वक मनाएं। कभी कभी उनके साथ बैठकर चाय पी लें या फिर टहलने जाएं। श्रोताओं, बुजुर्गों का स्नेह पाने के लिए बड़े उपहारों की नहीं बल्कि छोटे छोटे सम्मान और सच्चे अपनेपन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यदि ये हमारे साथ हैं तो हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं।

श्रोताओं, घर के बुजुर्ग परिवार का गौरव होते हैं। उनकी मुस्कान पूरे घर की खुशियों का आधार होती है। बुजुर्गों का हाथ सिर पर हो तो राह की मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। श्रोताओं, बुजुर्गों का सम्मान केवल संस्कार नहीं बल्कि एक सभ्य समाज की पहचान है। यदि आप बुजुर्गों का प्रेम पाना चाहते हैं तो उन्हें ये महसूस कराइए कि वे आज भी परिवार की सबसे अनमोल धरोहर हैं। सम्मान दीजिए, समय दीजिए और उनके अनुभवों को महत्व दीजिए। उनका स्नेह और आशीर्वाद स्वतः ही हमारे जीवन को समृद्ध कर देगा। तो श्रोताओं, आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विचार के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं, वक्त हो चुका है फिल्म संगीत का। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम शामे गजल, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे फिल्मों से चंद गजलें। कार्यक्रम की पहली गजल साथ साथ फिल्म से जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। जावेद अख्तर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है कुलदीप सिंह ने।

श्रोताओं, अर्थ फिल्म से ये गीत आपने सुना जगजीत सिंह के स्वर में। कैफी आजमी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था जगजीत सिंह ने। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम शामे गजल। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जतिन ललित के संगीत निर्देशन में निदा फाजली की शब्द रचना जगजीत सिंह के स्वर में सरफरोश फिल्म से।

श्रोताओं, निकाह फिल्म से ये गजल आपने सुनी गुलाम अली के स्वर में। हसरत मोहनी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था गुलाम अली ने। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम शामी गजल। श्रोताओं, कार्यक्रम में ये अगली गजल सुनते हैं बाजार फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और तलत अजीज की हैं। मकदूम मोइनुद्दीन की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है खयाम ने।

श्रोताओं, बाजार फिल्म से ये गजल आपने सुनी कार्यक्रम के अंत में। आवाजी थी लता मंगेशकर और तलत अजीज की। मखदूम मोइनुद्दीन की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था खयाम ने। श्रोताओं, इन गजलों के साथ ही कार्यक्रम शामे गजल यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम में आपने आज जिन फिल्मों से गजलें सुनी वे फिल्में थीं बाजार, निकाह, सरफरोश, अर्थ और साथ साथ। आवाजें थीं जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, गुलाम अली, लता मंगेशकर और तलत अजीज की।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, 8:30 हुए हैं। आइए एक बार फिर से आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का और सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत धरती कहे पुकार के फिल्म से मुकेश की आवाज में। मजरू की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, धरती कहे पुकार के फिल्म से ये गीत आपने सुना मुकेश के स्वर में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे थे मजरूह ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, धरती फिल्म से।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना धरती फिल्म से। शंकर जयकिशन की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था राजेंद्र कृष्ण ने। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। बोल लिखे हैं इंदीवर ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में धर्मात्मा फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। बोल लिखे थे इंदिवर ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 होने को है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिन्दी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमेरिका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एआई चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्वेति एल्पोरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है। यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के न्यूज शहर में जिस तरह से भारत यूनिवर्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के बीमो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत एआई पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है, ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 10 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीटॉक के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो भी हमारी लाइफ ही बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुवार जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर बढ़ने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशियाई हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकारें औद्योगिक और

0: वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पेट्रोल पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होवाई जलडम्बे मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा
2: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडम्बे नदी को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री

0: नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा में हॉर्मोज जलडमरू नदी को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
1: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Rishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, take 11 paths to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US Iran peace deal. And the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. Now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: In the first visit to the European Union by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर इवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। DRDO ने अंदरूनी मुल्क तैयार तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसराइल ने कहा है कि अमरीका ईरान अमन समझौते के बावजूद उसकी फौज लबनान, शाम और गजा में अपने ठिकानों पर गैर मुयना मुद्दत तक तैनात रहेगी। और फीफा वर्ल्ड कप में आज अमरीका के एटलांटा में ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन का मुकाबला केबो वर्डे से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने बाहमी तआवुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए। ब्रैटिस्लावा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब रॉबर्ट फिको के दरमियान बातचीत के बाद बहुत से शोबों में इन माहदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल हैं। फरीकैन ने एक समाजी तहफ्फुज के समझौते को जल्द हतमी शक्ल देने से भी इत्तेफाक किया। यह माहदा भारत और स्लोवाकिया के दरमियान आमद रफ्त में मसरूफ काम करने वाले पेशावर अफराद की बहबूद और समाजी सलामती को तहफ्फुज फराहम करेगा। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को जामे शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तआवुन गहरे बाहमी एतमाद और जामे तब्दीली की एक मिसाल है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबे में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: जनाब मोदी ने कहा कि एआई का मुस्तकबिल न सिर्फ इख्तिरा पर मबनी होना चाहिए बल्कि यह एतमाद, जिम्मेदारी और इंसानी वकार पर भी मबनी होना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में एक मुफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए गए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन के नए मौके पैदा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने भारत की तेज रफ्तार इकतसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और मसनूई जहानत के मैदान में गैर मामूली तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक मुस्तकिल रुकन की हैसियत से शामिल किया जाना चाहिए। दोनों लीडरों ने भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती माहदे को जल्द से जल्द नाफिज करने के तहत काम करने से भी इत्तेफाक किया, जो तवक्को है कि बाहमी इक्तसादी मसरूफियात को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। बाद में सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि वजीर आजम फिको के साथ उनकी मीटिंग भारत स्लोवाकिया दोस्ती के लिए एक इंतहाई मखसूस लम्हा है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत में ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और माहौल साजगार टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में तआवुन का अहाता किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वफूद की सतह की बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 11 समझौतों पर दस्तखत किए गए, जिनमें लेबर माइग्रेशन, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, आला तालीम, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एक एआई चेयर का कयाम, क्वांटम मवासलात, तालिब इल्मों के प्रोग्राम में तआवुन और सियाहत की फरोग के शोबे शामिल हैं। भारतीय कौमी साइंस एकेडमी और स्लोवाकिया की एकेडमी ऑफ साइंसेज के दरमियान साइंसी तआवुन से मुतालिक समझौते पर भी दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक ने इंसदादी दहशतगर्दी और कौंसिल सतह के मुजाकरात के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। नई दिल्ली से रूपेश राठौर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: ब्रेतिस्लावा में सदारती महल में स्लोवाकिया के सदर पीटर प्लेजरीनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। दौरे के दौरान दोनों लीडरों ने पंचतंत्र फोटो नुमाइश देखने से कबल महल के ग्राउंड में योगा का एक खसूसी मुजाहरा देखा। महल के बाहर भारतीय नजाद अफराद की बड़ी भीड़ इकट्ठी थी, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। बावनवां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर इवियान में शुरू हो रहा है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों G7 मुल्कों के रहनुमाओं का बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। भारत, ब्राजील, जनूबी कोरिया, कीनिया और मिस्र को इस सरबरा इजलास में शराकतदार ममालिक के तौर पर मदऊ किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की सदारत के तहत G7 सरबराह इजलास ने रवां साल के लिए कुछ कलीदी तरजीहात का इंतखाब किया है। इन्हें मैक्रो मईशत के बढ़ते हुए अदम तवाजुन में कमी करना, मुश्तरका तरक्की को फरोग देना और बैन अल-अक़वामी शराकत दारी की तजदीद करना शामिल है। तवक्को है कि तबादला ख्याल में हसास और मादनियाती अखदारी सिलसिले को मुस्तहकम करने, छोटे बच्चों को ऑनलाइन तहफुज फराहम करने और अहम जोग्राफियाई सियासी बहरान को हल करने पर भी गौर वखौज किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए कल इवियान पहुंचेंगे। वजीर आजम फ्रांस का ये दौरा सदर इमैनुअल मैक्रों की दावत पर कर रहे हैं। वजीर आजम का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये इजलास आलमी रहनुमाओं से मिलने का एक प्लेटफॉर्म है, जहां वो सिर्फ भारत के मामलात ही नहीं बल्कि आलम जुनूब के भी मामलात पर बातचीत कर सकेंगे। भारत में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार शिरकत अमन, सलामती, तरक्की और पायदार माहौलियात के शोबे में भारत के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी करती है। फ्रांस के एवियान से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے اوڈیشا کے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جزیرے سے ملک میں تیار کردہ لمبی دوری تک زمین پر وار کرنے والے کروز میزائل ایل آر ایل اے سی ایم کی آزمائشی پرواز کامیابی سے انجام دی۔

0: क्रूज मिसाइल के सभी जैली निजामों के मुल्क की मुख्तलिफ डीआरडीओ लेबोरेटरियों और भारतीय सनअती शराकतदारों के जरिए तैयार किए जाने के साथ ही ये मुकम्मल तौर पर मुल्क में तैयार किया गया मिसाइल है। वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल ने मिशन के सभी मकासद हासिल किए और भारत की लंबी दूरी तक दुरुस्त निशाने पर वार करने की अहम टेक्नोलॉजी पर मबनी सलाहियत को साबित कर दिया। वजारत ने मजीद कहा कि यह कामयाब तजुर्बा आत्मनिर्भर भारत और एक मजीद मजबूत कौमी दिफाई इको निजाम की जानिब एक और अगला कदम है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एलआरएलएसीएम की कामयाब आजमाइशी परवास पर डीआरडीओ टीम और सनअती शराकतदारों को मुबारकबाद दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क के शहरी हवाबाजी के शोबे में एक नुमाया संगे मील तय करते हुए आज उत्तर प्रदेश के जिला जेवर में नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों का आगाज हो गया। आज सुबह लखनऊ से आने वाली इफ्तिताही परवाज के साथ इंडिगो नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यह हवाई अड्डा दुनिया के वसी इलाके और मगरबी उत्तर प्रदेश को मुल्क और दुनिया के दीगर हिस्सों से जोड़ता है। यह आनवर का हवाई अड्डा मुसाफिरों को जदीद और जाने तजारती सहूलियात और खिदमात फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इब्तदाई मरहले में यहां से घरेलू परवाजें चलाई जाएंगी, नीज आने बैन अल-अक़वामी परवाजें चलाए जाने का भी मनसूबा है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर के नायडू ने कहा कि पहले मरहले में यह हवाई अड्डा 1,20,00,000 मुसाफिरों को हवाई सफर की सहूलियात फराहम करेगा, जो कि हवाई अड्डा मुकम्मल होने के बाद तवक्को है कि 7 करोड़ मुसाफिर सालाना यहां से सफर कर सकेंगे। आज पहली परवाज के जरिए सफर करने वाली एक मुसाफिर ने मीडिया से बातचीत करते हुए हवाई अड्डे के आगाज पर खुशी का इजहार किया। मुस्तकबिल में मुसाफिरों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दस्तियाब होंगी, जो बजट और सफरी खिदमात को पूरा करेंगी। इस हवाई अड्डे पर फजाई माल बर्दारी की खसूसी सहूलत भी दस्तियाब होगी, जो तबाही तौर पर 2,00,000 मेट्रिक टन सालाना होगी, जिसे बाद में 15,00,000 मेट्रिक टन तक बढ़ाने का मनसूबा है। सकलीन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: अमरीका और ईरान की जानिब से मगरब एशिया जंग को खत्म करने के लिए एक माहदे का ऐलान करने के कुछ घंटों बाद ही इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काट्स ने ऐलान किया है कि इसराइली फौज सरहदों पर अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगी। इसराइल के सलामती की पॉलिसी की बात करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि आईडीएफ इसराइली शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए लबनान, शाम और गजा में सलामती जोन्स में गैर मुहैया मुद्दत के लिए तैनात रहेगी। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि इसराइल ने फौजों की वापसी के लिए बैन अल-अक़वामी वक्त की मुद्दत पर अमल करने के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने इनकार से बराह रास्त मुत्तला किया। भारत ने मगरबी एशिया में लड़ाई खत्म करने और आबनाए हुरमुस को खोलने के बारे में अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत का खैर मकदम किया है। आबनाए हुरमुस एक तंग बहरी रास्ता है, जिसे आलमी तेल सप्लाई के 5वें हिस्से की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ये उम्मीद करता है कि इस मुफाहमत पर अमल दरामद होने से खित्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमद रफ्त हो सकेगी। अमन के इस माहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे। हुकूमत ने कहा है कि सभी रिफाइनरियां आला सलाहियत के साथ काम कर रही हैं, उनके पास खाम तेल के वाफिर जखायर मौजूद हैं और पेट्रोल और डीजल के खातिर ख्वाह जखायर को बरकरार रखे हुए हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहतरमा सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बारे में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए ये इंकशाफ किया। फर्टिलाइजर के महकमे में ज्वाइंट सेक्रेटरी वंदना प्रियाशी ने कहा कि मुल्क में फर्टिलाइजर्स का जखीरा मामूल के मुताबिक है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा कार्गो दिशा बहिफाजत आबनाए हुरमुस पार कर गया है। तवक्को है कि जुमेरात को ये दहेज बंदरगाह गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंच जाएगा। रेलवेज की वजारत ने शिमाली रेलवे की अंबाला डिवीजन के लिए 201 करोड़ रुपए मालियत के कवच प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कवच मुल्क में तैयार करदा खुदकार रेल तहफुजाती निजाम है, जिसे ऑपरेशनल सेफ्टी को मजीद बेहतर बनाने के लिए वजह किया गया है। रेलवे की वजारत ने गुजरात में अहमदाबाद डिवीजन के लिए भी 140 करोड़ रुपए के कवच प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। अहमदाबाद के साइबर जराइम से मुतालिक महकमे ने नीट इम्तिहान में हुई धोखाधही में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्जाम में राजस्थान और बिहार से 3 अफराद को हिरासत में लिया है। अहमदाबाद

0: साइबर जराइम के महकमे में ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस शरद सिंघल ने मीडिया को बताया कि राजस्थान से हिरासत में लिए गए दो मुलजिमान जाली सोशल मीडिया चैनल चला रहे थे, जिनमें वो नीट के दोबारा होने वाले इम्तिहान के पर्चे बेचने का दावा कर रहे थे। वजारत दिफा ने आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए रियासती डायरेक्टोरेट्स की तश्कील की मंजूरी दे दी। इस फैसले से मुल्क में एनसीसी रियासती डायरेक्टोरेट्स की कुल तादाद बढ़कर 19 हो गई है। वजारत ने वाजे किया है कि नए डायरेक्टोरेट्स की तश्कील से मरकजी सतह पर मुनाकिद होने वाले बाकायदा कैंप्स जैसे यूम जमहूरिया की परेड का कैंप और ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप में शिरकत करने वाले कैडेट्स की तादाद में इजाफा होगा। मुल्क के हसीस बाजार के अहम इशारे आज के कारोबारी सेशन के अख्तिताम पर तकरीबन 1% इजाफे के साथ बंद हुए। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहिदे के ऐलान के बाद सरमायाकारों का रुझान मुस्बत हुआ है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मैक्सिको में ग्रुप एफ के मैच में स्वीडन ने ट्यूनेशिया को 1-5 से करारी शिकस्त दी। आज के दीगर मैचों में अमरीका में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जाम शराकत दारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बहामी तावुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मंसब ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबराह इजलास आज रात फ्रांस के शहर एवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। डीआरडीओ ने अंदरूनी मुल्क तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोता, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनिता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आंख में आंख कान को ठीक रखें।
0: जी,
1: उसके लिए जो प्राणायाम होता है
0: जी,
1: गले को बहुत अच्छी तरह से ठीक रखता है।

0: साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी ले सकते हैं जैसे नाक में नासिका लेते हैं लाना
1: जी,
0: और डिलीवरी मिलावट बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जय प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग, और सिंगा कर सकते हैं, इससे गला की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बहुत मौसम में फिटनेस बढ़ जाएगी
1: जी। अनिता जी, आपसे जाना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, अपने आपको थॉटलेस हो जाइए
1: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी
1: जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे महाशय से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी, मुख्यमंत्री और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है, जो बैठे या काम करते हैं उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में जानना था। आजादी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर हो जाता है, तो इसके बारे में हम कोई योगा का स्टेप है तो उसके बारे में बताए। नमस्कार,
1: मुझे लगता है उन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं, जी बताएं।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
1: जी।
2: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है, तो आप हल्दी मेथी सौंठ ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें, तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहां तक आपने बोला है कि गले में है, तो उज्जय प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको इसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा, जैसे मौसम के बदलते हैं उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें, तो गले में आपको लाभ होगा
1: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमल जी हरिद्वार से, रवि जवालिया। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका?
4: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार
4: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, इस पवन दिवस उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सभी जानते हैं। तो सर, मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो इसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो, कोई हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य हो गया काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा?
0: धन्यवाद रवि जी, आपका जो प्रश्न है उसमें ज्यादा लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफलाइन ही काम करते हैं, बैठने का काम, तो आपने माध्यम से होते भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कोई योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैर को मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, जो भी जैसे आपने बताया उसमें भी कार्य करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन भी कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरे के आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटों बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी भी रखें, क्योंकि पानी अगर हम बीच में ज्यादा पीते रहते हैं, कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
1: जी,
0: तो पानी की कमी भी बहुत सारे लोगों का कारण होते हैं, तो आप इसको करें, आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद,
1: बिल्कुल लाभ होगा। और अनिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां?
2: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
1: जी,
2: तो फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है, और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, तो हंसी की बात आ जाएगी। हाँ, लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
1: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका?

0: मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नीमा बोल रहा हूँ और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे तो बहुत बधाई। और मेरा सवाल यह है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है?
1: जी बताएं।
2: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
1: जी,
2: और उसमें भी भस्त्रि का प्राणायाम है। लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रि का प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को बढ़ाने लगाए हैं, तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
1: जी।
2: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रुकना है, 2.5 सेकंड बढ़ना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
1: जी। कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से तेल योग करने चाहिए?
3: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 गिलास या 2 गिलास या 3 गिलास, जिसमें आपसे हो सके अपना पानी पीना है, बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है और रात में ब्रश करके सोना है
1: जी।
3: ठीक है, मुंह साफ रहना चाहिए। रात में जो भी लार रहती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जल इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बड़ा वाले लार है
1: वो
3: वेस्ट कर देते हैं, तो जो बड़े जो वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन के साथ, हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है, इसके अंदर घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे?
4: जी धन्यवाद, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतिया भी नहीं है या किसको कम दिखाई देता है, तो मैं दूसरों से पूछना चाहता हूँ की आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
2: आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं। ठीक है, और जो लार होती है ना, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे चश्मा बंद कर जाता है इससे। ठीक है, और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना, और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई का पीते हैं उसमें आंखों को धोना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
1: अनिता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोना और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
2: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था कमल भैया ने कि आपको कोला नहीं करना पानी पीने से पहले, तो वो लार आपके लिए, उससे बड़े दवाई तो कुछ है नहीं।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़े हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
5: नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी, सवाल डिस्टर्बेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनिता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं, कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
2: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है
1: जी,
2: प्रभावी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, यह प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए प्रभावी प्राणायाम बहुत अच्छा है जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
1: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत
6: है
1: जी, क्या सवाल है आपका?
6: कुमार जी नमस्ते।
1: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
6: वीडियो कर दो मेरे, नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
6: मेरा पहला सवाल यह है कि मैं भीड़ बहुत ज्यादा है,

0: कौन सा योग करना चाहिए और मेरे पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
1: जी जी,
0: और योगा करने से ये होगा
1: वेट के लिए विवेक मार्गे। सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें। पहला सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवनशैली के आपने फर्मेंटेड चीजों का ज्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीजों का अगर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में अगर सूट करता है, उसके बाद कांदे हैं और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीजों का आप यूज कर सकते हैं। पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हेड डीप ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिल का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफी लाभदायक है। और बैठ करके कटि सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद
2: अनिता जी। एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है, क्या दोनों को करना आवश्यक है?
3: ये दोनों योग के ही अंग हैं
2: जी,
3: प्राणायाम और आसन
2: जी।
3: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजिड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
2: जी।
3: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग है।
2: और हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं बिहार के दरभंगा से मोहन पासवान। मोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
4: धन्यवाद, प्रणाम करते सर
2: जी, बताइए।
4: जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वास्थ्य होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
3: नमस्कार। हाँ बिल्कुल, ऐसी योजना जो है लोगों की तो है ही, सदगुरु स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि स्वास्थ्य, सॉरी कुछ
2: जी
3: है ना, वो तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना, श्वास की क्रिया में क्या हमारे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाए, लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्र का प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्र का हम लोगों ने किया, और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
2: बहुत बड़ी बात जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, और हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनिता कौशिक और कमल किशोर। तो अनिता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठ रहते हैं, तो बड़ी थकान सी होती है।
3: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो है कि हर 2 घंटे के बाद आंखों को धोए पानी से
2: जी,
3: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालिए थोड़ा सा आंख में, जो कंप्यूटर में बैठते हैं उनको जरूर डालना चाहिए। 2-3 तरीके तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं। और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, 1 घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए, और आप सुबह प्रातःकाल में यदि थोड़ा कपाल भांति अनुलोम विलोम ये करेंगे, तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी, आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
2: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से रशीद अहमद खान। रशीद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों नमस्कार।
3: नमस्कार
2: रशीद जी,
5: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए आपने मैं शुभकामनाएं

0: जी सवाल पूछिए।
1: सवाल हमारा ये है कि जैसे कि आज योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
2: राजर्षी जी बिल्कुल निश्चिंत चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग नियंत्रण करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो। शुद्धता की जांच आप 9000 रुपये कर लें। अगर गुलाब जल लगता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर मान लीजिए, ऐसे आंखों में कुछ मिला लें, ठीक है। और योग के अंदर प्राणायाम सबसे ज्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे मैंने पहले ही बताया कि सुबह सुबह की बासी आवाज जो होती है, आंखों में रेगुलर बेसिस पर लगाएं, कादर की तरह आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
0: और आइए, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
3: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
0: जी,
3: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपना जो ध्यान का है आपको बोले ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर करें। प्राणायाम को यदि आप ध्यान में बदल करें, यानी कि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं
0: जी,
3: तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करेंगे तो होगा रिजल्ट,
0: बिल्कुल करेंगे तो होगा। कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, लोग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
2: देखिए, डायबिटीज और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में नहीं पैदा हुई हैं, ये पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने, तो ये मतलब नेचुरल बीमारियां नहीं, हम लोगों के द्वारा पैदा हुई बीमारियां
0: जी।
2: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जो आता है वाईफाई और मोबाइल के अंदर वाईफाई है, यह एक मुख्य कारण है
0: जी।
2: हर जगह तालाब में टॉक्सिन माहौल है, ऑफिस में टॉक्सिन माहौल है, कई जगह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, यह भी मुख्य कारण होता है। पहले कारण बताना जरूरी है, उसके बाद में बढ़ाना होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग बढ़ाएं, जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज भी सुनाई न दे। आप प्राणायाम करें तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में आए बहुत देर से शुरू हो जाते हैं, सारा फायदा होता है, नुकसान होता है
0: जी जी जी।
2: पर मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव यह है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो योगासन वन ऑफ द बेस्ट है। रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं। इससे खाचन खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है
0: जी।
2: और खाना जो खाया वो जल्दी पछता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का, तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंगों का समय दोनों मुट्ठी को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, नाभि की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां लोअर रहेंगी, जितने संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखें और सांसों को नॉर्मल लेना है। यह है मंगोपासन, ये बिल्कुल नॉर्मल इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौरव का आसन है, जिस पे भी नाभिक पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
0: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए, क्या सवाल है आपका?
4: सर, हमारा सवाल ये है, जो महिलाएं गर्भवती होती है, क्या उनको योग करना चाहिए क्या? और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
0: बहुत अच्छा सवाल,
3: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मुंडो का आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेट कर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भाती नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम करना है, भ्रामी करना है, उद्गीत करना है
0: जी।
3: तो ये कुछ प्राणायाम है जो उनको करने हैं और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
2: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, मुझे बटरफ्लाई रेगुलर करना है, बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, वो बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
0: और एक और शोध हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर। धर्मवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए, क्या सवाल है आपका?
5: नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, अक्सर को भी नमस्कार। एक तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो वो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए? क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती कई जगह।

0: टूट जाती है इस बारे में आप।
1: धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
2: घर घर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए। जितना ही बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा चिकित्सालय है तो मैं वहां बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीजों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती है। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूंगी खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। और तुम्हें भी आपसे जानना चाहेंगे, एक श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने के कितनी देर बाद योग कर सकते हैं?
3: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
1: जी,
3: क्योंकि उस समय हमारे सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग यही करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4 से 5 घंटे बात करना चाहिए दोपहर के बाद में, और शाम को दोपहर को भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह परेशानी होती है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले करना, वो उनके लिए लाभदायक होगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि इस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता बॉडी के अंदर, बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है बॉडी, एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें ज्यादा लाभदायक रहेगा।
1: और रायबरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी,
4: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग एक तो बहुत गणित कठिन है, और जो है ये दंड बैठक ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या?
3: जी रामाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद आपने जो प्रश्न किया। ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है ठीक है। तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत आता है क्योंकि उनका एनर्जिक लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जाने होगी तो फिर दंड बैठक लगाई जाएगी, तो प्राणायाम जितने ज्यादा अच्छे से करेंगे आपको ज्यादा लाभ देगा।
1: और बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका?
5: हाँ नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, और मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कुछ ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल से रहता है, तो हम लोग के शरीर में कितना भी इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन का लिया मैंने देखकर हम लोगों ने इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या? या फिर 10 दिन या 1 महीने करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था।
2: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है, आप देखिए कि जो भी योगाचारी होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं, तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ संपर्क कट गया है। अनिता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
2: हाँ सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक आर है प्राणायाम जो कि संपूर्ण है, यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें। जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पर बैठ के करते हैं नहीं वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं, और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं, रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं तो ये कर सकते हैं, और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।

0: की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है।
1: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम, और इसके अलावा अनुलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो इस विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, सूक्ष्म नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है। भ्रामरी प्राणायाम के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप अपने मिलें और हाथों की अलग अलग सेवाएं क्या करें, जैसे बदल बदल के क्या करें, और भी कुछ चीजें कर सकते हैं। मोबाइल ऑफ किया, एडमिट लिया, तो इससे क्या होता है मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आप अपने वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पर असर होता है। तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।

बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे। और श्रोताओं घड़ी की सोलह अब इशारा कर रहे हैं कि हमारे इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारे योग विशेषज्ञ अनिता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का यह अंक यही समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं और श्रोताओं आपकी पसंद पर हाजिर हैं हम लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। कार्यक्रम में संवादक हैं विशेषता शर्मा, प्रस्तुत करता है अनिंद्र सिंह। तो आइए सुनते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद।
1: हेलो मेरी पसंद। प्यारे साथियों, ये यादें भी बड़ी अजीब होती हैं। मन की दहलीज पर जब भी स्मृतियों का कोई झोंका आता है तो एक अनकही सी सिहरन जगा जाता है, और जब उन यादों को किसी प्रिय धन का साथ मिल जाए तो वो पल महज एक वक्त नहीं रहता बल्कि उम्र भर के लिए एक मुकम्मल एहसास बन जाता है ना? तो आइए इसी एहसास को फिर से जगाते हैं संवेदना और सुरों के इस सुंदर मोड़ पर। स्वागत है आपका हमारी और आपकी भावनाओं के इस साझा कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त विशेषता शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा, प्रेम भरा और मोहब्बत भरा नमस्कार। साथियों, ये कार्यक्रम एक खुला आमंत्रण है आपके भीतर छुपे उस एकांत को आवाज देने का जो रोजमर्रा के कोलाहल में कहीं थम सा जाता है। आज हम यहाँ सिर्फ गीत नहीं सुनेंगे बल्कि आपकी पसंदीदा धुनों के बहाने आपके जीवन के किसी अनछुए प्रसंग को टटोलेंगे। आपके कंठ से निकली एक फरमाइश आज न जाने कितने हृदयों में पुराने स्मृतियों के बंद कपाट खोल देगी। तो आइए इसी दूरी को पाटते हैं। अपने भीतर के उस ठहराव को पहले जरा महसूस कीजिए, अपनी पसंद के उस एक खास नगमे को याद कीजिए और फिर क्या, सीधे हम तक पहुंचा दीजिए। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी पुकार की। चलिए इस बेहद खूबसूरत और संगीत में संवाद का आरंभ करते हैं और देखते हैं कार्यक्रम में सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे श्रोता कौन से हैं। हेलो
2: जी, हेलो मेरी पसंद।
1: जी हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी मैं गंगानगर कुशवाहा से बनवारी लाल कुशवाहा बोल रहा हूँ।
1: बनवारी लाल जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया।
1: आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, कई बार आपसे बातचीत हुई है।
2: जी
1: आकाशवाणी आगरा को आप नियमित तौर पर सुनते हैं?
2: जी सभी कार्यक्रम पसंद लगते हैं। हेलो मेरी पसंद है, महिलाओं का कार्यक्रम है, बाल जगत है, मजदूर मंडल है, युववाणी कार्यक्रम है, लगभग सभी कार्यक्रम बेहद पसंद लगते हैं।
1: बहुत अच्छा लगा हमें। बनवारी लाल जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है क्रांति और गीत के बोल है जिंदगी बिना टूटे।
1: और कौन कौन सुनेगा आपके साथ इस गीत को?
2: हमारी मैडम है मंजुलता कुशवाहा और रवि आर्यन, हमारे बेटे हैं राम और श्याम और अन्य साथी।
1: ठीक है बनवारी लाल जी, आप अपने परिवार के सभी लोगों के साथ सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।
2: थैंक यू।

0: अभी आपने सुना क्रांति फिल्म का ये गीत, जिसकी फरमाइश की थी बनवारी लाल कुशवाहा ने। आइए अब बढ़ते हैं अगले फोन कॉल की ओर। हेलो,
1: राम लालों से बात कर रहा हूँ, नरेंद्र।
0: नरेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छे हैं।
0: मौसम कैसा है आपके यहाँ?
1: जी ठीक है, मौसम ठंडा है, कल रात बारिश हुई है।
0: अच्छा, आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: हाँ सुनते हैं।
0: कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम आपको?
1: कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, संगीत के सुनते ज्यादातर मैं तो।
0: और आज इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश क्या है, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: वो सुना दीजिएगा, आशिकी फिल्म का है, तू मेरी जिंदगी है।
0: ठीक है, आप अपनी पसंद पर अपने परिवार और घर में सभी के साथ सुनिए ये गीत।

0: ये गीत आप सुन रहे थे नरेंद्र जी की पसंद पर। अगले कॉलर हमारे लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं कहाँ से हैं। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार। हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं एकता क्लब सिंधौली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से इमरान शेख बात कर रहा हूँ मैम।
0: इमरान जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, और आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इमरान जी, हमारे कार्यक्रम सुनते हैं आकाशवाणी आगरा के आप?
1: बिल्कुल मैम, मैं सुनता हूँ, और तभी मैंने आज ये फोन किया है। और बहुत अच्छा लगता है मैम आपके केंद्र से जो फोन इन प्रोग्राम आता है ये, और जिसकी रिकॉर्डिंग हर फ्राइडे के दिन होती है, बहुत पसंद आता है, परिवार के साथ सुनते हैं मैम।
0: जी, हमें बेहद अच्छा लगा ये जानकर कि आप हमें इतना ध्यान से और इतना प्रेम से सुनते हैं। कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम, आपको पसंद आते हैं?
1: बिल्कुल मैम, सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। अभी आपके यहाँ से जो युवाणी कार्यक्रम आता है, युवाओं के लिए काफी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ रहती हैं, रोजगार की बातें होती हैं, शिक्षा की बातें होती हैं, और समय समय पर जो वार्ताएं सुनाई जाती हैं वो भी बहुत पसंद आती हैं मैम।
0: जी इमरान जी, आपकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ध्यान से सुनते हैं हमारे कार्यक्रम, और ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बिल्कुल मैम, ये जरूर बताना चाहूंगा, मैं सन 2007 से आकाशवाणी के अन्य केंद्र सुन रहा हूँ मैम, और जो आगरा से मैं अभी अभी लगभग 2 महीने पहले जुड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ के भी प्रोग्राम सुनने लगा हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम मैं राज मूवी का गाना सुनना चाहूंगा, गाने के बोल हैं आपके प्यार में हम सबरने लगे।
0: ठीक है इमरान जी, इस गीत को आपके साथ और कौन कौन सुनेगा?
1: मैम मेरे भाई हैं जीशान वारसी और अयूब खान करोला मुरादाबाद से।
0: जी, आप सबके साथ सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत, और अगली बार हमें फोन जरूर कीजिएगा।
1: बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम।

0: अभी आप सुन रहे थे इमरान शेख की फरमाइश पर राज फिल्म का ये गीत। अगले कॉलर लाइन पे हैं, आइए सुनते हैं कहाँ से हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: आपका नाम?
1: मेरा नाम चंदन है।
0: चंदन, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: लाल कोठी के पास, जयपुर से।
0: चंदन जी, और क्या क्या शौक हैं आपके, क्या हॉबीज हैं आपकी?
1: मुझे लेखन पसंद है, जीवन के खट्टे मीठे पलों को अपने कल्पनाओं के सांचे में डालना और फिर उस दुनिया को अपने हाथों से सजाना, लेखन पसंद है।
0: अच्छा, तो क्या लिखते हैं आप?
1: ज्यादातर कहानियां लिखता हूँ, लघु कथाएं और कुछ कुछ कविताएं भी।
0: कविताएं भी लिखते हैं? तो कोई कविता अगर आपने लिखी है तो हमें सुनाइए, श्रोताओं से आप चाहें तो बांट सकते हैं।
1: ओके। रेत के टीलों पर तुम्हें पत्र लिखे थे, सोचा था ये बस मेरे और रेत के टीलों के बीच की बात है, लेकिन ये हवाएं उनको उड़ा कर ले गईं और दूर, बहुत दूर तुमको सब सुना बैठे। मैं तो रहा यहीं और जाता भी कहाँ, न तुम्हारा नाम पता था न तुम थे कहाँ। पता नहीं था कि ये हवाएं इतनी बदमाश होंगी, बिना बताए मुझे मेरी सारी बातें बतला देंगे। दूर वादियों से आकर हवाओं ने मुझे आगाह किया कि आ रही है वो जिसको तुमने सोचा किया। थी नहीं उम्मीद कि कभी तुमसे मिल भी पाऊंगा, देख कर तुम्हें सामने इतना खुश भी हो पाऊंगा। कहना है बहुत कुछ, क्या क्या न कह दूं, सपनों में कहीं बातें क्यों फिर से न कह दूं। अगर ये सच है सपना जैसा, तो इसे सपना ही रहने दो, इस हसीन सपने में मुझे जीवन भर जीने दो। रोक लो इस पल को, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तुम मेरे सामने रहो, तुम्हारे सिवा अब और क्या चाहिए।
0: बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी कविता को सुनकर, बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप। तो आकाशवाणी आगरा को सुनते हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल सुनता हूँ।
0: कौन कौन से कार्यक्रम हमारे आपको पसंद आते हैं?
1: कार्यक्रम तो सारे ही अच्छे होते हैं, मगर कुछ बातें कुछ गीत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि यही वो कार्यक्रम है जिसमें माइक के पीछे जो इंसान बैठा होता है वो थोड़ा फिल्टर हटा के बात करता है।
0: जी, बड़ा अच्छा लगा हमें ये जानकर कि आप हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं और कुछ बातें कुछ गीत आपको इतना पसंद आता है। हम कोशिश करेंगे आगे और भी इसे अच्छा कर सके। चंदन जी, आपको कविताएं लिखना तो पसंद ही है, क्या आपको गाने सुनना भी पसंद है?
1: जी जरूर पसंद है।
0: तो आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मुझे अमर प्रेम फिल्म बहुत पसंद है, तो क्या आप रहना बीती जाए ये गाना सुना सकती है हम दोनों को?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप किसके साथ?

0: चंदन की पसंद पर अभी आप सुन रहे थे अमर प्रेम फिल्म का गीत। अगला फोन हमें कहाँ से आया है, आइए सुनते हैं। हेलो।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: हाँ जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका परिचय?
1: जी मैम, मैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर यूपी से मोहम्मद वक्कार फरीदी बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं वक्कार फरीदी साहब आप?
1: जी मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ और आज मेरी इस प्रोग्राम में पहली बार कॉल लगी है।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें आशा है कि आगे भी आप फोन करते रहेंगे।
1: जी मैम बिल्कुल। मैम आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक जानकारी चाह रहा था कि आपके यहाँ से कोई पत्रों पर या व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल पर आधारित कोई फरमाइशी प्रोग्राम हो तो वो भी बताने की कृपा करें।
0: ईमेल पर या व्हाट्सएप पर तो अभी हमारे यहाँ फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन पत्रों पर आधारित एक फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम चलता है रजनीगंधा, जो हर शुक्रवार को रात 10 बजे प्रसारित किया जाता है। तो उसमें आप अपने पत्र हमें भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन्हें जरूर शामिल करें।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, हर शुक्रवार को।
0: जी
1: अच्छा,
0: आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम फिल्म का नाम है मुझसे दोस्ती करोगे और इसका गीत है अंधे की अनजानी सी पगली सी दीवानी सी जाने वो कैसी होगी रे।
0: बहुत खूब, बहुत अच्छा गुनगुना लेते हैं आप।
1: जी मैम शुक्रिया।
0: अभी आप फिलहाल गीत को सुनते हुए गुनगुनाइए, लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।
1: ओके मैम, थैंक यू।

0: इतना खूबसूरत होता है ना ये एहसास कि हम सब अलग अलग जगहों पर हैं, अपने अपने कमरों में या तो अकेले बैठे हैं या अपने परिवार के साथ, लेकिन एक ही गीत ने हम सबको एक धागे में पिरो दिया। एक गीत जो हमारे मन में अनगिनत यादें जगा देता है। पर वक्त की जिद के आगे किसकी चली है जनाब, वक्त के आगे तो हम सब हार जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम को अब समेटने का वक्त आ गया है, इस वादे के साथ कि यादों का ये सिलसिला कभी धुंधला नहीं पड़ेगा और यूं ही चलता रहेगा। अगर आज आप अपनी पसंद हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं तो उदास मत होइए, अगली बार के लिए इस नंबर को अपनी डायरी में जगह दे दीजिए ताकि आप अपनी पसंद हम तक पहुंचा सकें। चलिए चलिए अब देर मत कीजिए, कलम उठाइए और नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 0562-350-1852 यानी 0562-350-1852। हमारा दूसरा नंबर है 0562-297-0337 यानी 0562-297-0337। तो अगली बार हमें फोन करना भूलिएगा नहीं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से। चलते चलते बस इतना ही कि रास्ते में अगर कोई अच्छा गाना मिल जाए तो ठहर कर उसे सुन जरूर लीजिएगा, क्योंकि जिंदगी गानों से ही तो मुकम्मल होती है। और अब मुझे यानी रेडियो की विशेषता को दीजिए इजाज़त, और आप, जी हाँ आप ही, अपना बहुत बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले सोमवार को। नमस्कार।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। संवादक विशेषता शर्मा, प्रस्तुतकर्ता थे अनिंद्र सिंह। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 10:30 हो चुके हैं। वक्त है शास्त्रीय संगीत का। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित मणि प्रसाद से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग कौशिक ध्वनि। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है। मुखड़े के बोल हैं हे राजा राम। द्रुत ख्याल की बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। मुखड़े के बोल हैं पिया बिना आई। तो आइए सुनते हैं पंडित मणि प्रसाद से राग कौशिक ध्वनि में ख्याल गायन।

Gaba dali gani gaba ni da maga dali da sa ga ni da maga dali.

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित मणि प्रसाद से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग कौशिक ध्वनि। श्रोताओं, इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 11 बजने को हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार सुनेंगे। तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: कौशिक ध्वनि। श्रोताओं, इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 11 बजने को हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार सुनेंगे। तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।
1: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अम्बाला और मंगलुरु सहित

0: iscsi.gov.in. Lota International Airport at Jewa in Uttar Pradesh commenced commercial flight operations today, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. IndiGo became the first airline to operate from Noida International Airport with an inaugural flight landing in Jewa from Lucknow this morning. In FIFA World Cup football, the Group H clash between Spain and Cabot underway at Atlanta, United States, and earlier in the day, Sweden thrashed Croatia by 5-1 in the Group F match in Mexico. And that is the end of the news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।